0: सिखी सिदक ना जाए।
1: फिर लो दे फुहारे छुट्टे, प्यो दी जिंद निकलदी निकलदी पुत दे मुंह वल वेख रही आ, ते प्यो पुत वल वेख के कह रहा धन सिखी, ते पुत प्यो नू वेख के कह रहा धन सिखी। मेरे पिता जी तुसी धन जे सिखी च पूरे उतरे हो बजुर्ग होके भी, ते बजुर्ग प्यो कह रहा वा मेरे पुत्रा तू नौजवान होके ये चरखड़ी दे दंदिया ते बह के सिखी न पाई आ तेरी धन सिखी। कदी इना ध्यान दियो एकाग्रता, जो सिजो कंबली अल्लाह वरसे मैं हूं। अगे जी
0: जाए मिला तिना सजना टुटो नाही ने हो,
1: जावा उस मालक दे चरणा विच जावा दर्शन ददार करा, अपने मालक नू मिला गलवकड़िया पावा, जेड़ी मेरी भोखिया भवरे दी भोखिया वाशना, भवरे दी भोखी है वाशना, मगर असी कितना दे भवरे बन गए, असी फुलां दे प्रेमी बन गए वाशना दे नहीं। आखो सतनाम श्री, फर्क समझ लिया, फर्क समझ लिया कि नहीं। आपा घर घर दे विच गुलदस्ते एडे एडे फुलां दे लिया के रखे ने, ते किसे भौरे नू आखो, भौरे नू आखो किधर चलिया, कहिंदा मैं फुलां दी फुलवाड़ी चलिया, कहिंदा की लैण, कहिंदा मैनू फुलां नाल प्यार आ, फुलां दी सुगंधी नाल प्यार आ, ते तुसी आखो आ जा कोई गल नहीं अज मेरे घर चल, मेरे घर भी बड़े फुल ने, ध्यान दियो मेरे घर भी बड़े फुल ने, ते चार सवेरे घूम के चल जूगा, उन्हें उन्हें फुलां नाल वेखना ही नहीं, क्योंकि उन्हें पुछया मुन लगे नू मुड़ चलिया वा, उथे कोई अलोकार गुलाब दे फुल नहीं आवे, किड़े किड़े सुंदर गुलाब दे फुल ने, उन्हें कहा सजना ए फुल बनौटी ने, इन्हां विच कुछ नहीं। जिहड़ियां साडे घरां विच भी बाबियां दियां फोटो लगियां ने ना, करमा वाला गुरु दा सिख इन्हां बाबियां वल नहीं वेंदा, क्योंकि उन्हां दे विच सुगंधी नहीं, सुगंधी आ ते केवल जागदे जोगदे, जागदी जोत गुरु ग्रंथ साहिब दे विच। एक बाणी विच गुरु नानक साहिब ने वचन कीता है रसिया होवे मुश्क का, बोलो रसिया होवे तब फूल पछाणे, जे कोई जीव आत्मा प्रेमी होवे वाशना दी ते ओ आखूगी ये गुट्टे दा फुल आ, ये चमेली दा फुल आ, ये फलाने दा फुल आ, ते जे वाशना दा ना प्रेमी होया केवल फुल दा होया ते आखू ये फुल ने। इस करके गुरु दे प्यारे हो वाशना नाल प्रेम करना है, ओ वाशना गुरु ग्रंथ साहिब दे विचों मिलदी आ, केवल ते केवल धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विचों मिलदी आ। दुनिया ते कोई पीर कोई पकंबर कोई देवता जेदी पूजा करन आप जी नू नहीं किया, इको ही गल आप जी नू गुड़ती दे विच पाई, गुरमुख नादंग गुरमुख वेदंग गुरमुख रिया गुर ईश्वर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई, जे हों जाना आखा नाही कहना कथन ना जाई, आख दियो एक बार गुरा एक दे बजाई, जिया का एक दाता सो मैं। उस गुरु दे लड़ लगो जेड़ा सारे संसार दा प्यो आ, सारे संसार दा पिता है। मेरी हाथ जोड़ के आप जी सारे नूं बेनती दे, अगले एतवार इस वेले नूं अमृत दा बाटा तैयार होना है, अमृत वेले 7 बजे दा टाइम रख देना है, क्योंकि दीवान लगन तो पहलों पहलों अमृत दा बाटा तैयार हो जाए। मेरी हाथ जोड़ के बच्चियां वीरां गुरसिखां सारिया के चरणों में बेनती है, गुरसिख प्यारियो ये फर्ज समझो, जन नानक धूड़ मंगे तिस गुरसिख की जो आप जपे अवरै नाम। आप अमृत छकिया जे ते दसो संसार दे लोकां नू यह अमृत बड़ा मिठा है, दसो संसार दे लोकां नू कि अमृतधारी सिख दा जीवन होवे जन्म सुहेला, असी सुखी हां। लोकां नू दसो कि असी अमृत जिदन दा छकिया वा, साडे घर विचों 100 वैवता निकल गईयां, साडे घरों विचों बीमारियां निकल गईयां, साडे घरों विचों परेशानियां निकल गईयां। संसार दे लोकां नू प्रेरो, होर नेमियां प्रेमियां नू प्रेरो, मेरे सतगुरु कृपा करन कलगियां वाले पातशाह कि उस दिन आपां वड्डी गिणती विच गुरु गोबिंद सिंह साहब दे धीआं पुत बणीए, ते मेरे सतगुरु दीआं असीसां लईए, प्रचार करन दा कथा करन दा। संत बाबा हरदेव सिंह लूलो कलां वाले एक दिन बचन किसे दी कैसट विच मैं सुन रहा सां, ओह कहिंदा कणक ते बड़ी बीज दी दी, उग भी बड़ी पैंदी, वड भी बड़ी लईदी, मगर पता ते उदन लगना जिदन बोल किन्ना क लगदा है। कथा तां सुन लई, कीर्तन दरबार ते करा लै, पता उदन लगना गुरमुखो प्यारियो, जिदन ए पता लगे कि 15 दिनां दी कथा ते कीर्तन दे विचों किन्ने गुरु दे सिख सजे ने। इस करके आप आयो ते होरनां नूं प्रेरियो, संदेशा दियो कि अमर शकीए गुरु वाले बणीए, भुलाना च उतारनिया वड्डी गिणती विच आउणा। वाहिगुरु जी का खालसा
2: वाहिगुरु जी की फतेह,
3: वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਰੁਣੀ ਸੈਵੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ
1: ਅੰਦਰੋਂ ਜੁਣ

सचेत हो सतगुरु गुरु नानक पातशाह दी पावन बाणी दे कि जे तेरी गठड़ी दे विच गुण होए, जे तेरी गठड़ी दे विच परम पिता परमेश्वर दी बख्शी रहत होई ते परमेश्वर आप तेनु कहूगा आ खालसा मेरो रूप है, खालसे मैं हूं करूं। आ प्यार नाल आण के दोवे बावां पहाड़ पहाड़ जिहड़ियां भारी भजान के भारी भरोसो वड्डियां बावां वाला बापू आखूगा खालसा मेरो पिंड प्राण है, खालसा मेरी जान की। मगरों ता आखूगा जे तू गुणा दी मालक होएगी ते अवगुण वाली नू ते मेरे साहब कहिंदे मेरे कंत न पावे चोलड़ा प्यारे क्यों धन छेजे जाए। मेरे साहब कहिंदे ने अवगुण यारी कंत न पावे, बोलो अवगुण यारी, सारे बोलो जरा अवगुण यारी। मन की खोटी खोट कमावे, मन की खोटी अवगुण यारी। उस मालक नू चंगी लगदी नहीं, मन दी खोटी खोट कर दिया, फिर का सावना जाने मूड़ा अंदरों पिरदा सा ओदा सुभा नू इहने जाणिया ही नहीं कि मेरा पति ते उहना नाल प्यार करदा जिहड़ियां गुणवंती ने, जिहड़ियां गुणां दीआं मालक ने। ते आपां इस करके गुरमुख प्यारिओ मेरे सतगुरु दे चरणां विच बेनती करनी आ कि आपां नू सतगुरु गरीब नवाज जी कृपा करो निर्गुण यारे गुण नानके, निर्गुण यारे गुण नानके। हे मेरे सतगुरु गरीब नवाज मैं निर्गुण यारा वां, मेरी झोली दे विच गुणा दी दात पा, जेड़े गुणा दा जेड़ी रहत जेड़े नाम सिमरन बंदगी जेड़े जीवन दा सदका मेरा ते तेरा विछड़े दा मलाप हो जाए वोहे।

0: आखो सतनाम श्री नाभी चो खेत आखो सतनाम
1: श्री वाहिगुरु।
0: कलयुग में एक नाम आधार, बोलो कलयुग में एक, फिर बोलो कलयुग में एक
1: नाम,
0: एक नाम आधार। कलयुग दे विच एक नाम ही आसरा है। धन गुरु अमरदास महाराज दा पावन बचन पिया करो, घट घट कर दे साचा नाम मेरा आधारो, आसरा है मेरा सच्चा नाम, सच्चा नाम मेरा बेस है, सच्चा नाम मेरी टेक है, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा, फिर बोलो जिन भुखा, एक बार रोम रोम दे दरवाजे खोल के आखो जिन भुखा, सच्चे नाम दी वडियाई जिन भुखा, सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया, जिन इशा सदा कुर्बान कीता गुर विटो, जिस दिया

नाम साचा नाम मेरा आधार, सच्चा नाम मेरा आसरा है, सच्चे परमेश्वर का नाम मेरा आसरा है, कलयुग दे विच मेरी इज्जत पत रखण वाला मेरे को इको ही गहना है, इको ही परमेश्वर की टोक है दिती हुई जिहड़ी सतनाम श्री वाहेगुरु। नाम वालियां दे अपने सेवक दे पर्दे ढकदा है, अपने सेवक की लाज पत रखदा है, जिहड़े नाम जपदे ने ना उहनां नूं मेरे साहिब जी कहिंदे ने औखी घड़ी ना देखण दे अपना बिरद संभाले, हाथ दे राखे अपने को सास सास प्रत पाले। जेड़े नाम जपदे ने उहनां नूं रोगन ते अर सोगन ते जल जोगन ते बहु भात बचावे, उहनां ते छतर अनेक चलावत कहावत तन एक ना। कितना रखदा जी, कितना बचाउंदा है, राखत है अपनो कर दे कर, कर मने हथ, उहनां नूं अपना हथ दे के बचा लैंदा, राखत है अपनो कर दे कर, पाप समूह न पेटन पावे और की बात कहां कहतो सो, सो पेट ही के पट बीच बचावे, माता के उदर में प्रतपाल करे सो क्यों मनो वसारिये, मनो क्यों वसारिये ए वड दाता जे अगन में आहार पहुंचावे। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह। इतना लिखिया गुरबाणी दे विच के मां दे पेट विच ए पुट्ठा, इतना गुरबाणी विच लिखिया कि जिथे अग्न पखे पड़हारे, अग दे लाटां बलदियां सी इहदे चार चफेरे जीव दे, उर्द मुख महा गुबारे, पुट्ठा मूह थले नूं लत्तां तां नूं, ते बड़ा अनेरा सी उथे जिथे मां दे पेट विच अग विच जल रिहा सी विचारा, मगर उथे ए जप रिहा सी वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह। उथे जदों जपदा सी ना इतना शब्द लिखे एकाग्रता बख्शे आखो सतनाम श्री, जिथे अग्न पखे पढ़हारे उर्द मुख महा गुबारे, ते ध्यान देना है उथे लिखिया सास सास संभाले सोई, ए सास सास उस वाहिगुरु नूं याद करदा सी, उथे अग दे विच गुरमुख प्यारियो ए 24 घंटे वाहिगुरु दी याद विच जुड़िया सी, ते उथे फिर अग दे विच उथे खसम छडाए लिया, इनू उथे पुठे लड़के नू उथे खसम छडाए लिया, बोलो हां उथे खसम, फिर बोलो उथे खसम, उथे पुठे लड़के नू किन्ने छडाया खसम दे वाहेगुरु ने, ते जदों इथों छडा के बाहर लै आंदा इतना लिखिया है विचों गर्भे निकल आया, बोलो विचों गज के आख्या करो, उस फोटो नू वेख के उस तस्वीर नू वेख के कि उथों छडा के किसी ने गवाही दे के एदी जामनी भर के किसी ने उथों छडा के बाहर लिया, विचों गर्भे निकल आया, बोलो विचों गर्भे निकल आया, जो बाहर आया खसम वसार दुनी चित लाया, खसम वसार दुनी चित लाया, फिर बोलो खसम वसार दुनी चित लाया, बस विचों बाहर आया ते ओ जिहड़ा छडाउण वाला सी ओ भुल गया, दुनिया चेते आ गई, मम्मी चेते आ गई, चाचा चेते आ गया, नानी चेते आ गई, फुफी चेते आ गई, हुण ए चेते ने, ते माया अमर वरताया, माया दा हुक्म चलन लग पिया, मेरे सतगुरु कहिंदे जैसी अगन उधर मैं तैसी बार,
माया जितना अग्न अग दी अंदर च तरले पाउंदा सा है मैं सड़ जूंगा आ बार माया दी अग विच भी बंदिया इथे भी तरले पा उस वाहिगुरु नू इथे भी तेनू जे अंदरों दी अग विच उहने छडाया वा ना ते इस अग दे विचों भी तेरी सहायता उहने ही करनी है इथे क्यों भुल गया है ਇਹ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੜ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਿਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਅਰਪਾ ਸੰਖਾ ਨੀਲਾ ਰੂਹਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਮੋਹ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਕਾਮ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੜ ਗਈਆਂ ਈ ਜੇ ਇਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਪਿਆ ਕਰ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਣ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤੈ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਥਾ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਤਾਰੋ

सच जुड़ के आखो आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच अगम अगोचर सच।

कुदरत कवन हमारी ज्यों बलावे त्यों बोला स्वामी। कुदरत कवन हमारी साध संग नानक जस गायो जो प्रभु की आत प्यारी। साध संग नानक जस गायो।

सबना का खसम है। ए सच सबना का खसम है, जिस बख्शे सो जन पावे, जिस बख्शे सो जन पावे। कहे नानक सच सोहेला सच्चे घर गावे, कहे नानक सच सोहेला सच्चे घर गावे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारे गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यार विच आण के, गुरु सत्कार विच आण के, आप जी सर्वत माई भाई तनता दे जोग राजान राज पानान पान देवान देव महान सतगुरु के जाहर जहूर हैं, के हाजर हजूर हैं, हमेशल सलाम हैं, समस्तल कलाम हैं। समस्तल कलाम सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह दीन दुनिया के मालिक पातशाह जी चरण शरण विच आण के आप जी ने बड़े प्यार ते अदब सत्कार दे नाल जिथे गरीब नवाज पातशाह दी बाणी सरवण कीती, नितनेम साहब सरवण कीता है, उथे कीर्तन विच आप जी सरवण कर रहे। सो भाई रे राम कहो चित लाए, बोलो भाई रे मन नू मुखातब करके भाई रे राम कहो चित लाए। हर जस वखर लै चलो शौ देखे पति आए, हरी दे जस दा सौदा करके जाओ भाई, परमेश्वर खुश होके आप जी नू गल नाल लावे। शौ देखे पति आए, सतगुरु गरीब नवाज आप जी नू गल नाल लावे। मेरे सतगुरु जी अगे जाके जड़ी जोदड़ी कर रहे ने, आओ सारे पढ़िए वणजक।

0: गुरु आखो जी सतनाम श्री भाई रे राम कहो भाई रे राम कहो बोलो भाई रे
1: राम कहो
0: चित लाए हर जस वखर ले चलो इथो जान लगे पंडा बन के जाओ इथो जाके लाद खेप संतें संग चाल जिस वखर को लैण तू आया राम नाम संतन घर पाया ता जब मान लिहो मन मोल राम नाम हिरदे में लाद खेप गड्डे लद के जदों सरकारे दरबारे जावे तू निरंकार दे दरबार विच ओथो तक तेरे गड्डे खलोते होण ते पुछण भाई कौन आया है ते आखणे पजनीक सिंह आया है ए जरनैल सिंह आया है ए रजिंदर सिंह आया है ए गुरु का प्यारा आया है की करके जी ए गड्डियां दे विच की भरिया है ते किते ऐसा ना होवे फोल फोल के वेखिए ते विचों चुगलियां निकलन विचों निंदिया गड्डे ते दोवां दे लदे जाने ने चंगियाईयां बुरियाईयां बोलो चंगियाईयां फिर एक बार आखो कादे गड्डे लदे जाने चंगियाईयां बुरियाईयां वाचे धर्म हजूर उस धर्म की हजूरी विच जाके धर्मराज के हजूर विच दो ही चीजा ते परखियां जानियां बंदिया तेरिया चंगे ते मंदे कर्म ते वेख कोई एहो जिहा कर्म कर तेरी एक एक पंड दे विचों निकले सतनाम श्री वाहिगुरु तेरी एक एक कहो नानक समझ रे आने आज काल खुले तेरी गांठुली बोलो आज काल खुले तेरी आप बचन जरा चंगी तरह बोलो कि अज जा कल उथे जाके तेरी गठली खुलनी गांठुली गांठुली मैंने गठ इथो जज हुंदा बाणी विच मेरे साहब कहिंदे ने कि गठा मार रहा बंदा हर रोज इहदियां गठा बन रही ने ते कहिंदे कहो नानक समझ रे आने बोलो कहो नानक समझ रे हे मेरे आने मना हे आने जीव ए गल समझ ला कि आज काल खुले तेरी गांठुली बोलो आज काल खुले तेरी उथे निरंकार दे दरबार च तेरी गठ खुलनी है चेता कर उस गठ दे विचों की निकलूगा किते चुगलियां ना निकलना किते निंदिया ना निकले किते शराब दियां बोतलां ना निकलना किते मास ना निकले किते कुकर्म ना निकलना जेड़ी जेड़ी तेरी गंढ परमेश्वर खोले उहदे विचों निकले सत नाम वाहे गुरु सत नाम वाहे गुरु सत
1: नाम वाहे गुरु
0: भैणों गज के मेरिया धियां गज के जरा बोलो

0: एक साहब ने वचन बड़ा प्यारा किया, समा दौड़ गया मेरा, कहो नानक ताके बल जाओ, बोलो कहो नानक ताके, मैं ओदे तो बलहार जाना, स्पष्ट जिहा शब्द है, कहो नानक ताके बल जाओ, कलयुग में पाया जिन नाओ, कलयुग में पाया जेडे कलयुग विच जपदे ने सतनाम श्री वाहे, कलयुग जपण नहीं दिंदा, इन्हें टुंड मरुंड कर दिता सारी दुनिया का जीवन, कोई फुल खिड़दा ही नहीं, सारी दुनिया नू अग लगी ईरखा दवै दी, मगर साहब कहिंदे मैं बलहार जाना जिहड़ा कलयुग विच वी कहिंदा सतनाम श्री वाहे, ते तुसी भागां वाले हो जिन जिन नाम ते आया तिनके काज सरे, हर कार्ज मेरे सतगुरु सवार दिंदे गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भगत करन ते, गरंटी दे शब्द, जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता, उन्हां दे काज सवारता परमेश्वर, जेड़े जपदे ने सतनाम श्री वाहे। आओ हुण अपनियां मन बिरतियां नूं खलारो, जुड़ो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह दे चरणां विच, सुरत नूं टका के रखियो, मेरा सतगुरु कृपा करे मन बाहर ना जावे, सुरत बाहर ना जावे, आओ बाबा फरीद जी दे पावन बचन सरवण करिए जी।
1: सतनाम श्री वाहेगुरु साहेब जी,
0: वाह।
1: नाती धोती संभही सुती आए नचिंद,
0: आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। पहली गल तां गुरमुखो चेते रखियो, घरां विच की बोलना हुण, पंजाबी बोलिया करनी, बच्चियां दे नाल पंजाबी पढ़नी, पंजाबी बच्चियां नूं पढ़ाउणी है। इत्थे बाबा फरीद जी बड़े प्यारे वचन कर रहे, कहिंदे नाती धोती संभही, नहा लिया धो लिया अपने आप नूं संभाल लिया, मगर सब कुछ करन तों बाद फिर सौं गई, जदों परमेश्वर नूं मिलण दा वेला आया फिर सौं गई। नाती धोती संभही सुती आए नचिंद, एक अर्थ प्रोफेसर साहब सिंह साहब ने होर कीता है, वह कहिंदे पढ़ लिख गया विद्वान बन गया, मगर सारा कुछ पढ़ लिखते गया, मगर जदों परमेश्वर की बंदगी की गल आई उदों बेहोश होके सौ गया। जिथे नितनेम की गल आई, किताबां तां पढ़ लईआं, मगर जिथे नितनेम की गल आई, सिमरन की गल आई, उस गलों बेहोश होके ए जीव सौ गया। इथे मेरे सतगुरु का यह भी अर्थ बन सकता है, कोई कोई अमृत वेले उठिया होए, नाता होए, धोता होए, परमेश्वर की बंदगी करता होए। महापुरश बाबा प्रीतम सिंह साहब होए ने, उन्हां दे कोल जिहड़े विद्यार्थी रहिंदे सी, ते जदों अमृत वेले 2 बजे उठा लैंदे सी, आखो सतनाम श्री, 2 बजे इशनान करा के सिमरन बंदगी विच ला लैणा, जदों सिमरन बंदगी करके 5 बजे तक 3 घंटे अभ्यास चो नितनेम चो उठाउणा, ते कईआं मेरे वर्गियां आलसियां ने सौ जाणा फिर, ते उहने आवाजां मारदे फिरना मत्थे ते हथ फेर फेर के, ओ भलिओ जे नितनेम करके सौ जाईए ते इतना वा बड़ी सुंदर पैली बना ली होवे, ओदे विच बीज पा दिता होवे, ओदे उते सुहागा मार दिता होवे, मगर ओदे उते बरसात हो जाए ते की जम जांदी उते, और रुकड़ी जी जम जांदी है ना, फिर ओ फेर नहीं पैंदी है दंदा जिहा वाली, ते फिर बीज विचों निकलदा वा। कहण लगे इतना ओ बंदगी कीती उगदी नहीं गी, जदों आपां एक वार सवेरे उठ कलोईए सिमरन कर लईए ते फिर सौ जाईए घराड़े मारन लग पईए। इथे भी बाबा जी इस तरह के वचन करते ने, कहिंदे सब कुछ जान लिया ज्ञानवान हो गया, मगर परमेश्वर दे वेले आण के सुती होए नचिंद, बोलो सुती होए, उस वेले जदों सिमरन बंदगी दा वेला आया, विद्वता तां प्राप्त कर ली, किताबां तां पढ़ लईआं, मगर सिमरन दे वेले नचिंद होके सौंगी, फिर की रह गया जी।
1: फरीदा रही सो बेली हिंग दी, गई कथूरी गंद,
0: कथूरी दा मतलब हुंदा कस्तूरी, की मतलब हुंदा जी, कहिंदे ने जिहड़ी कस्तूरी दी सुगंध छुट्टी सी ना अंदरों अमृत वेले सिमरन बंदगी करके, ओ फिर उड गई सौण दा सदका, ते हिंग दी जदों हिंग दी बो आउंदी आ, जिहा इलाके जिहदे च हिंग हुंदी होवे, जां जिहने मुंह दे विच हिंग पाई होवे, ते कदी किसे ने आख्या हिंग दी खुशबू आ रही, की कहिंदे ने, हिंग दी बो आ रही, कहिंदे फिर जिहड़ा सिमरन बंदगी वाला सुभा सी, जिहड़ी नाम बाणी वाली बिरती सी ना, ओ ते सौण करके निचिंद होके बेहोश होके सौण करके विचों कस्तूरी वाली खुशबू ते उड गई। फरीदा रही सो बेड़ी हिंग दी, रही सो बेड़ी हिंग दी, बेड़ी हिंग दी बदबो ही रह गई मुंह दे विचों, केवल विद्वता रह गई, केवल ते केवल एदियां सियाणपां ही रह गईआं, मगर कस्तूरी वाली जिहड़ी खुशबू सी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, उड़दिया बहिंदिया सौंदिया ए मुंह जिहड़ा वाहेगुरु निकलना सी, जिहड़ी परमेश्वर का मिठा सुभा सी, ओह उहदे मुंह माथे त्रिकुट्टी दिष्ट करूर, बोले कौड़ा जे बाकी फूड, ਕੌੜਾ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਡ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਨਾਤੀ

वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह। अच्छा ऐनी प्यास लग गई हो, ऐनी अंदर तड़प पैदा हुई हो, ऐनी वो तो बिना उदास हो गई है, सिर देन नु तैयार है। आंधी हां सजना नैन हमारे पेरे आ रंग रंगारे, मेरिया अखा ओ रंग विच रतियां गई ने, 24 घंटे होर किसे नु नहीं देख दिया, 24 घंटे गाउंदियां ने, एक भोरी दर्शन दी जय, एक भोरी दर्शन दी जय, एक भोरी पावां तरला तुसी भी, एक भोरी दर्शन दी जय, एक

जन्म सोहेला हो जन्म सोहेला हो ते फिर घर खड़िया उन्हें मेनू वखाया अजीबो करीब मंजा रखिया है मंजे दे उत्ते बलविंदर सिंह दी फोटो लाई फोटो दे कोल चौर रखिया है मैं क्या वो कदी आया है कहिंदा आया मेरे घर मैं क्या वो दे सामने वो दी फोटो दे चौर करदा सा कहिंदा जी वो दी सामने वो दी फोटो दे चौर करदा सा आखिर मन विच की छुपिया इन्हां लोकां दे शर्म भी नहीं आउंदी लज्जा भी नहीं आउंदी कि एक बंदा होके मेरी फोटो दे उत्ते कोई चौर करे चलो मगरों कोई अज्ञानी करे चवर तख्त दा मालक ते धरती ते इको या गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह जी ते चौर हो सकता है होर किसे ते चौर नहीं हो सकता 1978 दे विच जिहड़े 13 सिखां गुरमुख प्यारियां ने शहीदी पाई सी इसे करके पाई सी कि निरंकारी बाबा अपने सिर ते चौर करवाउंदा सी कहिंदे असीं नहीं वेखणा चौर हो सकता है ते केवल गुरु ग्रंथ साहब दे उत्ते हो सकता है ते गुरमुख प्यारे हो इहदी फोटो दे उत्ते उन्हें चौर रखे ते चौर करदा है ते मालक दे गुटके उन्हें मंजी दे थले रखे जांदिया दास ने पहलो मारी फोटो भुआ के उहदी चुक के ते फोटो सुट के मैं कहा सजना इस मंजे दे उत्ते ए चादर जिहड़ी नापाक होई है दी फोटो दे नाल इहनू चुक इत्थे पवित्र चादर विछा जे गुरु दा अमृत लैणा ही ते इस मंजे दे उत्ते हुण पोथियां रख जिथे अगे फोटो सी पोथी परमेश्वर का थान ओनू थां दे जिहड़ी पोथी परमेश्वर जोगी इस करके गुरमुख प्यारे बचना है ते अंदरों अपने उस मालक लई कहना है एक छिन अंदर

हे साहिब जी ए जड़ी रोज अरदास हुंदी आखो सतनाम श्री हे साहिब जड़ी रोज अरदास हुंदी आ खालसे दी भावे अकाल तख्त ते अरदास होवे भावे हजूर साहब अरदास होवे भावे तख्त श्री पटना साहब अरदास होवे भावे केसगढ़ साहब अरदास होवे दुनिया दे हर कोने दे गुरुद्वारे विच हे मेरे सतगुरु सुख मंगी जांदी आ खालसे दी जहां जहां खालसा जी तहां तहां रशिया रियायत रोज अरदास कीती जांदी आ ते मेरे सतगुरु जिन्हां दी रोज अरदास हुंदी आ उन्हां दी कलास दे विच मैनू भी रला ला मैनू भी खालसा बना ला अरदास करो मेरिया भैणा बच्चिया वीर गुरसिख फिर एक एक दा नाम दस के अरदास ना करानी पवे रोज सुते सिद्ध पटीशन हो जाए रोज सुते सिद्ध अरदास गुरु दे घर विच रोज एप्लीकेशन तुहाडी लगे जे तुसी खालसे बन जो ते इस करके परसों ए भागां वाला दिन आउणा है कोई मेरी भैण कोई बच्चा मन दे प्रभाव थले आण के गुरु दा पल्ला ना छड़ दिओ दो तरह दा जीवन हुंदा है गुरु मर्जी ते मन मर्जी गुरु मर्जी ते मन मर्जी ए मन मर्जी होगी जिहड़ा आखोगे अजे साल खलोना है ए गुरु मर्जी होगी कि जिहड़ा कहिंदा हर जपदिआं ढिल ना कीजी मेरी जिंदड़ीए मत जापे साह आवे केहड़ा आवे राम ए गुरु दी मर्जी होगी

0: करिए करिए मारिए पहली लहर जाए।
1: वेखो बाबा जी का कल वाला बचन आप जी ने सुनिया सी कि दर दरवाजे जाए के, बोलो दर दरवाजे क्यों डिठो कड़ियाल वेख्या जे कदी ए नदोशा मारिये एनु नदोशे नु मार पैंदी। हम दोषा दा क्या असी दोषी जने आ, असी किन्ने क दोष कीते ने अपने आप नु पुछो। दाग दोष मुंह चलिया लाए दरगे बैसन नाई जाए जेता मोह प्रीत स्वाद। आपा कहने जी मैं केड़ा दोष कीता है, जिन्ना मोह आ ए भी दोष आ, जिन्नी प्रीति संसार ना ए भी दोष आ, ते जिन्ने जीभा दे स्वाद ली रस माने दे ए भी दोष ने। जेता मोह बोलो जेता प्रीत स्वाद, ए तीन गल्लां गिण गए मेरे गुरु नानक पातशाह। जिन्ना मोह प्रीति ते स्वाद आ ना लाए तू मुंह नू, ए सबा कालख दागा दाग, ए तेरे मुंह दे ते कालख दे दाग लग गए ने। ते जिन्हां दे मुंह दे ते कालख लगी होवे, जिन्हां दा मुंह काला होवे, उहनू चंगे लोकी कोल नहीं बहन दिंदे। एक बार पिंड दे विच किसे ने बजर गलती करती होवे ते आपां सब तो वड्डी सजा उहनू की दिंदे सां, मुंह काला करा के खोते ते चढ़ाउणा। ते फिर सारी उमर ली पिंड दे लोकां ने उहदे दादियां पड़दादियां तक याद रखना, पोतरियां तक याद रखना कि इहदे दादे दा मुंह काला कीता सी, ते इहदे नाल मेल वर्तन नहीं रखना। मेरे सतगुरु कहिंदे जिन्ने मोह ते प्रीति स्वादां दे विच तू पियावां इह तेरे मुंह दे उत्ते दाग लगदे जांदे ही। ते मेरे साहिब जी कहिंदे इह नदोशा मारिए हम दोषां दा साडा की हाल होणा है, अग्गे किन्नी मार पैणी उस निरंकार दे घर विच जाके। डरिया करो थर हर कंपे बाला जियो, क्या जाना क्या करसी पियो। थर थर कंबदी है जीवात्मा, पता नहीं उस घर विच जाके किन्नी सजा मिलनी। मगर जिन्हां नूं जाग आई, जिन्हां नूं पता है कि किते जाना है, जिहड़े बेपरवाह होके कहिंदे किते भी नहीं जाना, उन्हां नूं कहदा है इह ते उदन पता लगना जिदन फड़े गए। हुण मेरे सतगुरु जी अगले सलोक विच कहिंदे ने फरीदा इनू वेख घड़ी घड़ी पिछों, पैर पैर पिछों। आप जी नूं पता वा कई चार पैर पैर पिछों वजदा सी, उह टल जिहड़ा खड़कदा सी, किसे नूं इक घंटे बाद वजदा सी। घड़ीए घड़ीए मारिए पैरी लै सजाए, किते पैरां करके सजा मिलदी, किते घंटिया बाद उहनूं सजा मिलदी जिहड़ा टल बूहे दे अगे टंगिया है। हांजी
0: सो हेड़ा कड़ियाल जियो दुखी रहण विहाए।
1: ए विशा चल रहा ए विस गंदलां दा। बाबा जी कहिंदे ने जिन्हां ने विस गंदलां दे पिछे लग के अपना जीवन बर्बाद कर लिया, जिस तरह ओह मार खांदा ते दुखी हुंदा वा, सो हेड़ा हेड़ा मैने शरीर, ओह शरीर भी रोगां दे विच पै के, दुखां विच मोह विच पै के, कलेशां विच पै के इस तरह ही दुखी हुंदा जिस तरह टल दुखी मार खा के हुंदा। सो हेड़ा घड़ियाल ज्यो, उस घड़ियाल वांग ओह शरीर भी दुखी रहिंदा है। दुखी रहण विहाए, उन्हां दे भी जीवन दी रात जिस तरह ओह बेचारा कदी इधरों मार खांदा कदी इधरों मार खांदा है। ए कदी पुत वल्लों परेशान हो गया, कदी धीआं वल्लों, कदी नौआं वल्लों, कदी पोतरियां वल्लों, कदी कारोबार वल्लों, इह सारा जीवन जीव दुखी रहिंदा है जिस तरह ओह टल मार खा के दुखी रहिंदा है। सो हेड़ा हेड़ा मैने शरीर घड़ियाल ज्यो, उस घड़ियाल वांग दुखी रहण विहाए, इहदे जीवन दी रात भी सारी दुखां विच बीत जांदी है जी।
0: बुढ़ा होवा शेख फरीद कंपन लगी देहे।
1: ए हुण जीवन दा ए पहलू अगेड़िया है कि एक दिन बंदिया तू बुढ़िया हो जाणा है। आखो सतनाम श्री, ते उदन की होना है, उदन हाथ इतना इतना सिर कंपियो, ते पग डगमगे दा मतलब डगमगा गए, रखने किते चाहुंदा सी रखे किते गए, गड्डी ते चढ़न लगा पैर रख के उत्ते पैर उत्थे रखिया नहीं गया, पैर डगमाग आ गए, सिर कंबण लग पिया। तीसरा कहिंदे नैन जोत ते अखां जोतना तो हीणियां हो गईयां। तू दस फिर बंदिया कहो नानक ए बिद पई जदों ए तेरी हालत हो गई, सिर कंपियो पग डगमगे नैन जोत ते हीण जदों ए तेरी हालत हो गई, कहो नानक ए बिद पई फिर तऊ ना हर रस लीन, कितना हरी दे रस विच लीन होएगा, फिर गले दी बलगम करेगा दूर के अपने शरीर दीआं पीड़ां बाहां कुटेगा के सिर दर्द दूर करेगा के अखां नाल गुरु साहब दे दर्शन कर लै कितना कर लेंगा। कहो नानक ए बिद पई तऊ ना हर रस लीन, उदों हरी दे रस विच लीन नहीं होया जाणा ਜੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰ। ਨੈਣੋ ਨੀਰ ਬਹੇ ਤਨ ਖੀਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗ ਗਿਆ, ਤਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਣੋ ਨੀਰ ਬਹੇ ਤਨ ਖੀਨਾ, ਭੈ ਕੇਸ ਦੁੱਧ ਵਾਨੀ। ਰੁਧਾ ਕੰਠ ਸ਼ਬਦ ਨੀ ਉਚਰੇ ਅਬ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋਆ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਕੰਬਣ ਲੱਗੀ ਦੇ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਹੱਥ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪੈਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜੀਭਾ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ
0: ਜੇ ਸੋ ਵਧਿਆ ਜੀਵਣਾ,
1: ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੌ ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਤੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਦੀ ਸੋਚ ਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ। ਬੋਲੋ ਰੇ ਮਨ, ਭਈ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ। ਚਲੋ ਇਤਰਾ ਪੜ ਲੋ, ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ ਰੇ ਮਨ ਰਾਮ।

ज्यों बुलावहो ज्यों बुलावहो त्यों नानक दास बोले, ज्यों बुलावहो ज्यों बुलावहो त्यों नानक दास बोले। तुमरी गात मेत तुम ही जानी,

0: धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु
1: नानक धन गुरु नानक गुरु नानक धन गुरु नानक
0: धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक
1: धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक
0: सिद्ध कहिंदे ने असी सारी मंडली ने तुहानू धन कहा, हरिद्वार दे पांड्या ने तुहानू धन कहा, जगन्नाथपुरी आलिया तुहानू धन कहा, मुल्तान दे पीर तेरे चरणा ते डिग पे, मक्के मदीने वाले गढ़ बगदाद वाले तेरे चरणा ते डिग पे, आखिर राज की ध्यान दे जरा, आखिर राज की शक्ति की। ते धन गुरु नानक पातशाह कह रहे ने सिद्धो खोजत खोजत अमृत पिया, बोलो खोजत खोजत लभदिया लभदिया वह चीज लभ गई जिदे नाल फिर सारे मसले हल हो जांदे ने। खोजत खोजत अमृत पिया, अमृत पीता मैं जिदे करके जय जयकारा हो गई, जिदे करके जय जयकार हो गई, हर मन तन वसिया सोई जय जयकार करे सब कोई, मन तन विच परमेश्वर वस गया। ते फिर सिद्धा ने अगला सवाल किया, ये जिहड़ा अमृत आ बड़ा कीमती आ? साहिब गुरु नानक पातशाह कहिंदे हां बहुत कीमती आ। आखिया फिर दिता की कीमत की दिती दे? ते बड़े प्यारे बचन गुरु नानक साहब ने जो उथे बोले, बड़े प्यार दे बचन ने, कहिंदे खिमा गई मन सतगुर दिया। अमृत नहीं उतरा मिलता जिना चिर मन नहीं अपने गुरु दे अगे अर्पण करना पैंदा, जिना चिर मन नहीं जीव आत्मा वेच देंदा। आ लोकी बहुते कहिंदे मेरा मन नहीं करदा, मेरा मन नहीं मन्या, मेरे मन की अजे परिपक्वता नहीं हुई। गुरमुख प्यारे हो ते रोगी होए नू, एनू कोड़े होए नू, एनू विगड़े होए नू, मन बेचै

0: पिता सम तरला पाओ पिता समझावेंगे पिता समझावेंगे पिता
1: समझावेंगे पिता समझावेंगे।
0: धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज समझा इन्हां अपने सिखां नूं ए तेरी गोद विच आण के रोज बैंदे ही इन्हां नूं तपदियां सड़दियां नूं होर कोई जगह नहीं मैं होर थां नहीं जिस पे करूं बेनती रोज कहिंदे ही आउंदे भी तेरी गोद विच ही प्यो भी तेनू मानदे ही साहिब माता नूं साहिब कौर नूं मां भी मानदे ही मगर एक दूसरे दी लत्तां खिंचदे ही एक दूसरे दे दुश्मन ही है तेरे सिख हे मेरे सतगुरु इस पंथ उत्ते बौड़ी कर हे मेरे गरीब नवाज पातशाह इस पंथ उत्ते तरस खा रहमत कर बौड़ी कर इस पंथ दी इन्हां विच आपस विच प्रेम बख्श कदी तू गुड़ती दे के कहा सी सच कहूं सुन ले हो सबे जिन प्रेम कियो सतगुरु ए उल्टे चले गई है नफरत कर दे एक दूसरे ना हे मेरे गरीब नवाज तुसी गुड़ती दिती सी जिन प्रेम कियो ए नफरत कर दे इन्हां नूं तरस कर रहम कर इन्हां दे पैरां तो लैके सिर तक पै कोड़ नूं अपनी नजरे अनायत नाल ठीक कर तरस करो महाराज इस पंथ दे उत्ते ए तेरी शरण विच आण के बाणी पढ़दे ने ना को वैरी ना ही बगाना ए झूठ मारदे ने तेरी शरण विच इन्हां ने सारे ही वैरी बनाए ने इन्हां ने सारिआं नूं बगाने समझिआ है हे सतगुरु ए उत्तों उत्तों कहिंदे हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई इन्हां दे अंदरला कोट ठीक करो ए जितना बाहरों सोहणे लगदे ने गुरु गोबिंद सिंह साहब अंदरों भी सोहणे बनाओ इन्हां नूं हे मेरे मालिक इन्हां दा इलाज करो मेरा वैद गुरु गोबिंदा हे मेरे मालिक वैद बन के इन्हां दे अंदरले कोड़ नूं ठीक करो पंथ नूं एक दूसरे नाल प्यार कराओ ए ते सारे संसार नूं गल विच लकड़ी लैके इन्हां कहना सी अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे तुसी ते अमृत छका के भाई कन्हैया जी ने वर्गे प्यारियां नूं कहा सी तू पास हो गया है तेनू कोई बगाना नहीं दिसदा हे सतगुरु असी एक संगत विच बहके एक थाल दा कड़ा प्रसाद छकन वाले एक लंगर दे विच पंगत विच बहके लंगर छकन वाले असी मन करके एक दूसरे तो बड़े दूर हो गई सतगुरु तरस खा साडे दे उत्ते मेरे सतगुरु कहण लगे मैं खिमा लै लिया ते मन परमेश्वर दे चरणा विच वेच दिता है सिद्धो जिदन तो मैं खिमा लै लिया परमेश्वर कोलो जिदन तो मैं नीवा पान लै लिया परमेश्वर कोलो ते मन जड़ा खराब करदा सी ए वेच दिता है सतगुरु अगे उदन तो खरा खरा आके सब कोई बोलो खरा खरा फिर बोलो जी खरा खरा आके एक दो शब्द हुंदे ने एक खोटा ते एक खरा जिदे मन विच कोड़ होवे आपां कहिंदे मन दा औगणयारी कंत ना भावे मन की खोटी खोट कमावे मन दा खोटा बंदा खोट कमाउंदा है इत्थे गल्ला कुछ होर करदा है उत्थे कुछ होर करदा है ओ प्यारियो किथे तुर जाओगे किथे जाओगे केड़े साहिब दे अगे ओ साहिब दे अगे जाओगे जेड़ा साहिब सतगुर अंदरों निरवैर है सतगुर उस गुरु दे सामने पेश होना जाके जेड़ा अंदरों निरवैर आ उस गुरु दे सामने एक दिन जाके पेश होना है सतगुरु सबना दा भला मनाएदा बोलो सतगुरु उस गुरु दी शरण विच जाना है उस गुरु दे सामने जाना है केड़ा मुंह लेके जाओगे केड़ा कोड़ जाके विखाओगे मालक नूं अपने अंदर नूं शुद्ध करो तरला पाओ एक बार नक रगड़ो आण के गुरु दे अगे हे मेरे सतगुरु मेरे अंदर दी बीमारी ठीक करो मेरे साहिब कहिंदे जिदन तो मैं मन गुरु नू दे के खिमा ओदे कोलों लै लिया उदन तो खरा खरा आके सब कोई जे मके गया वा ते अंदरों बाहरों एक सा ओ अखां वालियां नू नजर आ गया उन्हां कहा खरा आ गया वो पैरी पै गए जिन्हां नू खरा ज्ञान सुनाया मके मदीने वालियां नू सुनाया मके मदीने वाले काजी पैरां ते डिग पए गढ़ बगदाद वालियां नू सुनाया गढ़ बगदाद नीवा हो गया मुल्तान विच गया मुल्तान वाले पैरी पै गए क्योंकि मन दे दिता सी ते खिमा गुरु कोलों लैके खरा हो गया सा खरा नानक पारख आप बोलो नानक पारख आप जिन खोटा खरा पछाणिया मेरे सतगुरु दे चरणा च बेनती करो मेरे साहब कहिंदे ने सिद्धो ए सारी करामात अमृत दी बनी ए अमृत करके मेरा मन इना शुद्ध हो गया है खरा खरा आखे सब कोए खरा रतन जुग चारे होए खात पियंत मुए नहीं जानिया खांदिया पींदिया जिन्हां चिर मुंह दे स्वाद लाए सी उन्हां चिर ते मरन दा ही ना पता लगा उन्हां चिर ते मरन दी जाच ही ना आई ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੂਆ, ਬੋਲੋ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ, ਤੇ ਮਰ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਆ ਸਵੇਰੇ ਆਉਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਸ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਬੂਲ ਕਰ।

दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराहे तेहा हौ करी वखियान। बेशुमार अथाह अगंत अतुल, ज्यों बुलावहु

परनवत नानक तिन की शरणा, जिन तो नाही विसरिया। परनवत नानक तिन की शरणा, जिन तो नाही विसरिया। परम सम्मान योग चवर शतर तख दे मालक, जुगह जुग अटल साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन

लीला कि कह लगे नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत छुट्टे तिल बुवार जो सुन्य अंदर खेत खेत अंदर चुटिया कहो नानक सो ना प्यारे फलिये फुलिये बपड़े पी तन विच सवा की होया जे पदार्थ लै गयो कोठियां बन गईयां कारां आ गईयां दुनिया विच वाह वाह वाह वाह हो गई तिल भी बड़ा आकड़ के अपने आप विच रहिंदा सी पता तो उदो लगा जो मालिक दे घर विच परवान होने की गल चली। मैं जिथो बेनती आरंभ की सी इकला शरीर नहीं इस शरीर नू छड के एक दिन जिंद ने तुरना है जिंद नाल केवल गुरु जांदा है ते जाएगा उन्हां नाल जिन्हां ने गुरु दी गल मन लई। साहिब गुरु अर्जुन देव जी ने ता ही कहा सी कहन लगे शरीर नाल काबले तुरदे ने पर जिंद नाल कदी शरीर भी नहीं तुरदा हुंदा। शब्द वल ध्यान दिया जे शरीर नाल काबले तुरदे ने वेखो बंदा चलिया चौं जणियां दे कन्न पर जिंद नाल शरीर भी नहीं जांदा। उत्थे साहिब ने शब्द वरते ने सतगुर सिख का हालत पलत सवार है नानक सतगुर सिख को जी नाल संभार है। जे अपनी जिंद का कोई साथी बनाना है ता केवल वो सतगुरु है सतगुरु तो बिना कोई साथी नहीं। सेवा राम दियां पर्चियां दी वो गल कह के मैं समाप्ति करना। अज गुरु कलगीधर जी का जे पुरब नान तुरे हो गुरसिखो सिर्फ एक विशा रखिया सी कि गुरु तो बिना पार उतारा नहीं। साहब गुरु कलगीधर बारे कई वक् वक् तरीके इस घटना पेश सज्जन करते हैं पर यह सेवा राम की परची विच लिखी हुई घटना है उस किताब का नाम है परची दसवें पातशाह की कह के संपूर्ण करना। कह लगे सतगुरु के हाथ में पत्थर है कई बार तुसी श्रवण किया उन्हें उस पत्थर नू पकड़िया उन्हू खब्बे तो सज्जे हाथ से सज्जे तो खब्बे हाथ से उछाल के रखते हैं अचनचे तो पत्थर हाथ विचों निकलिया ते डिग्या पानी विच पानी विच डिगदिया सार वो पत्थर डुब गया। ध्यान दिया जे हजूर रुके ते पुछया इस पत्थर दे डुबण दा कारण की। कहन लगे महाराज पत्थर भारा है पानी दा सुभाए डोब देंदा है। दूजा कहिंदा पानी दा सुभाए भारी चीज नू डोब देंदा है पर गुरमुख प्यारे किको गल के प्यारे भाई दया सिंह हे दाता जी पानी दे सुभा दा पता नहीं पत्थर दे सुभा दा पता नहीं बस जेड़ा तेरे हथों निकल गया उन्हें डुबने ही डुबना है उदे तरन दा कदी सवाल ही नहीं पैदा होंदा। गुरमुख पत्थर भी तर जांदा है जे गुरु वाला बने ताई साहब ने कहा ज्यों पाखान नाव चर तरै प्राणी गुरचरण लगत मिस्तर है। कल इसे विषय नूं आपां अगे तोर के अमृत वाले पासे आउणा है। साहब धन गुरु ग्रंथ साहब कृपा करन सानू सारिआं नूं सूझ बख्शन कल अमृत संबंधी उस तो अगे रहत फिर खालसा होईआं पुल्लां बख्श देणीआं जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।

सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच खै ती सच नानक खुशी पी सच

कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगण ना विचारो कोई। माटी का क्या तुप है स्वामी, मानस की गत एगी। माटी का क्या तुप है स्वामी, मानस की गत एगी। परम सम्मान योग शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाए मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सत संगी जनों, उस अकाल पुरख वाहगुरु जी की कृपा सदका धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की प्रेरणा का सदका अज का एक कथा दरबार आयोजित किया गया। आप जी ने सिख कौम के महान विद्वान सिंह साहब ज्ञानी जसवंत सिंह जी परवाना उन्होंने पासों गुरमत

0: ਧੰਨ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਸੋਏ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਕਾਮਣੇ। ਧੰਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਐ ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਪਤੀ, ਧੰਨ ਮੈਨੇ ਇਸਤਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਜੋ ਸਰੀਰਾਂ ਕਰਕੇ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ ਧੰਨ ਫਿਰ ਕਹੀਐ ਸੋਏ। ਤੇ ਧੰਨ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਫਿਰ ਬਦਲ ਗਏ ਨਾ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਧੰਨ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਤ ਦਿਹਾੜੈ ਧੰਨ ਵਰੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸਨੇ ਵਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਹੇ ਲੈ ਲਿਖਾਏ, ਉਹ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹਿ ਕੇ ਦਿਨ ਨੀਯਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹੀ ਤਜਵੀਜ਼, ਇਹੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ, ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਦਿਨ ਮਿਥ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਹੂਰਤ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਮੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫਕ ਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਵਹਿਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਇਆ ਬੜਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਹਿਮ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਤੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਡਤਾਂ ਪਾਂਧਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਡੁੱਬੋ। ਤੋ ਖੈਰ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਿਹਾੜੈ ਧੰਨ ਵਰੀ ਸਾਹੇ ਲੈ ਲਿਖਾਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੌਤ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਾ ਉਹ ਦਿਨ ਨੀਯਤ ਹੈ, ਮੁਕਰਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਨੀਯਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਬੰਬ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਰਿਆ ਸੀ, ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਬੰਬ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬੰਬ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਮੁਕਰਰ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਨੀਯਤ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਨੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅਗਰ ਮੌਤ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਪਰੋਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ। ਮੌਤ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੌਤ ਦਾ ਬੰਬ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪਤਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਉਸ ਮੌਤ ਦੇ ਬੰਬ ਨੇ ਬਲਾਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲਾਸਟ ਹੋਣਾ, ਬੰਬ ਫਟ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਮੁਕਰਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਤ ਦਿਹਾੜੈ ਧੰਨ ਵਰੀ ਸਾਹੇ ਲੈ ਲਿਖਾਏ, ਮਲਕ ਜੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀਂਦਾ। ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਲਕ, ਤੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜੋ ਤਾਕਤਵਰ ਮੌਤ ਦਾ ਮਲਕ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਗਈ, ਫਲਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਬੀਤ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵਾਪਰਦੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੌਤ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਆ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਣ ਕੇ ਤੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ मरघट जिन्हों मड़िया कही शमशान भूमि वसों तो बाहर बनाए ने वसों तो दुरेडे बनाए ने ताकि मौत सानू आउंदिया जांदिया नजर ना पै। एक पासे नवेकले दुरेडे थां दे उत्ते शमशान भूमि नू बना दिता पर कौन दसे कि मौत इस तरह की बलवान है जो हर घर का दरवाजा खड़का के उन्हों मरघट बनन दे उत्ते मजबूर कर देंदी उन्हों शमशान भूमि बना के रख देंदी। कोई भी घर इस तरह का नहीं है जो मौत दे फरिश्ते तो बचिया होवे मौत दे ताकतवर इस फरिश्ते तो अपना आपा बचा पाया होवे। जाओगे भी कित्थे भज के जिथे भी जाओगे मौत तुहाडे नाल है तुहाडे अंदरों पैदा होनी। कहन लगे मलक जे कन्नी सुनी दा अज दूजिया दे बारे सुनिया फलाने नू मौत आई अपने बारे मनुख विश्वास नहीं करदा। एक मैरिज होर करदा चला तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पवित्र बाणी दे अंदर विशा एक नहीं है हजारां विशयां दे उत्ते गुरबाणी दी चर्चा है। गुरु साहिबाना दे भगत जना दे बचन ने औगुणा दे संबंध विच गुणा दे संबंध विच जिन्नियां बुराईयां ने उन्हां बुराईयां नू नचिजक गुरु ग्रंथ साहिब जी ने चर्चा दे अंदर लियांदा है। जिन्ने गुण ने उन्हां गुणा दी भी चर्चा कीती। इस तरह चर्चा करदियां करदियां अगर गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच्चों मूल रूप विच दो टॉपिक लभीए कि केड़े ने ते फिर यह बचदा है कि हर पंक्ति दे अंदर हर शब्द दे अंदर गुरु बाणी ने सानू परमात्मा नू चेते करन वास्ते हुक्म लाया है फरमाया है परमात्मा नू अपने चेते दे अंदर लियाउण दा यतन कर वसाउण दा यतन कर परमात्मा दे नाल जुड़ परमात्मा दी बंदगी कर उदे गुणा नू अपना शब्द शब्द दे अंदर पंक्ति पंक्ति दे अंदर सानू ये उपदेश मिलदा है। दूसरा बहुती बाणी दे अंदर सानू साडा अंतला पल चेते कराया गया साडा मौत वाला पल चेते कराया गया। मैं भगत फरीद साहब जी दे सलोकां नू प्रारंभ कीता है प्रारंभ दे अंदर ही भगत फरीद साहब मौत चेते करवा रहे जिसनू मौत चेते विच आ जाए कि मैनू मरना पैना है ओ बंदा गुनाहां तों बाज आ जांदा है ते ओ बंदा गुरु दी शरण विच आ जांदा है सतगुरु जद मैं मरना ही है मैनूं जाना ही पैना है ते फिर मैं अपने जीवन नूं विगाड़ा क्यों अपने सिर दे उत्ते पाप अपराध दी पंड बन के रखा क्यों जद मरना ही है ते फिर ये भी नहीं पता कि मौत दा डंका वज कदों जाना है। ये ते जरूरी नहीं कि 90 साल बाद ही मौत ने आउणा है या 100 साल बाद मौत वाली घटना घटेगी पता नहीं मौत का डंका कदों बज जाना। हजूर का फरमान तो इस तरह भी है कि हरी ना ही नह डडरी पक्की वडन हार उदी मर्जी बालपन विच लेके चला जाए उदी मर्जी है वह जवानी के दौर विच मौत नूं भेज देवे उदी मर्जी वह बुढ़ापे तो बाद ले जावे मर्जी तो परमात्मा की अपने ते बस विच नहीं और ना ही अजे तक कोई मौत नूं रोक पाया ते ना ही मौत नूं कोई रोक पाएगा। खैर जो मैं बेनती कर रहा सा कि मौत दे संबंध विच गुरु बाणी दे अंदर वार वार जिक्र आया जिसनूं मौत ध्यान विच आ जाए मौत चेते विच आ जाए वो पापां अपराधां तो बच के गुरु दी शरण विच आ जांदा है अपने जीवन दे सुधार हित ते जे पहला गुरु चेते विच आ जान मौत बाद विच चेते आवे ते फिर गुरु चुके इनू मौत चेते करवा देंदे ने कि तैनू मरना पैना है ते जे मरना पैना है ते फिर पाप अपराध क्यों कर रहे हैं जे मरना ही पैना है ते फिर दोष क्यों कमा रहे हैं। मौत चेते विच नहीं गुरु चेते विच नहीं ते मनुख नचिजक हो के पाप भी कमाई जांदा है अपराध भी कमाई जांदा है दिन पर रात कमाई जांदा है केड़ा मरना है जाना सी गवांडी ने चला गया मेरी ते पक्की एटे थी मेरा ते पक्का टिकाणा ही। तो खैर भगत जी कह रहे ने मलक जे कन्नी सुनी दा कन्ना दे नाल सुन रहे सा अज फलाने दे घर मौत आई कन्ना दे नाल सुन रहे सा और लंबे समय तो सुन रहे सा पर समझ उदों आई मुंह दखाले आए जद मौत राणी ने मुंह दे उत्तों कुंड चुक के दरवाजा खोल के आण दीदार दिते। ते मैं एक बेनती होर करदा चला सूझवान तजर्बेकार सज्जन इस तरह कहिंदे ने ओह कहिंदे ने कि बंदे दी जिंदगी दे अंदर एक वार अख जरूर खुलदी अख खुलन तो मतलब इनू एक वार जिंदगी दे मोड़ दे उते किसे ना किसे मोड़ दे उते होश जरूर आउंदी इनू समझ जरूर आउंदी किसे किसे विरले नेमी प्रेमी नू समझ आ जांदी ए कथा करके जां कथा सुन के कीर्तन करके कीर्तन सुन के बाणी पढ़ के बाणी सुन के संगत करके किसे नू ते समझ गुरुद्वारे आउन तो बाद ए आ जांदी ए कथा विचार सुनन तो बाद ए समझ आ जांदी ए कि मौत ने आउना है ते मैं अपने जीवन नू सुर ताल दे अंदर तरतीब दे अंदर कर लवां ते मौत आउन तो पहला पहला कर लवां। मौत ने आउना आउना जो ना कथा कीर्तन सुन के जागे ना बाणी पढ़ सुन के जागे उदे वास्ते कोई उपदेश कारगर सिद्ध ना होवे कोई कथा कीर्तन कारगर सिद्ध ना होवे उदी फिर अख उदों खुलदी जदों मौत दरवाजा खोल के उदे अंदर आण के उनू दीदार देंदी उदों दी अख खुलदी। पर मैं बेनती करां जे उदों अख खुली फिर ना खुली दे बराबर है उदों होश आई ना आई दे बराबर है क्योंकि हुण कुछ कर सकण दा समां साडे पास बाकी नहीं है। अगर कथा कीर्तन सुन के गुरबाणी पढ़ के संगत विच बह के कोई विचार शब्द दी करके अज होश आ जाए कि मरना पैना है फिर ते साडे पास समा बाकी अपना सुधार कर लवांगे अपने लगे हुए दाग दोष जेडे आप ही अपने मन दे कपड़े ते लाए ने उना नू धो लवांगे। ते जे समझ ही उदों आई कि जदों समा ही खत्म हो गया ते फिर समा कोल होना नहीं फिर करना भी चाहवांगे कर नहीं पावांगे। फरीद साहब जी कहन लगे मलक जे कन्नी सुनींदा मुंह दिखाले आए। ओ जो मौत दा फरिश्ता कन्ना दे नाल सुन रहे सां ओ एक दिन अपने घर दे अंदर आण के दीदार दे देंदा है। जिंद निमाणी कढ़ी है हड्डां कूकड़काए कहन लगे फिर इहदे विचों जिंद नूं कढ लिया जांदा है प्राणा दी माला बिखर जांदी सवास रुक जांदे दिल दी धड़कन खत्म हो जांदी नाड़ां दे अंदर गर्दश कर रहा खून उन्नू भी रुकन दे उत्ते मजबूर होना पैंदा है ओह भी पानी दा रूप बन जांदा है। पर कदों जदों मौत दा फरिश्ता आण के घर दे अंदर खड़ा हो जांदा है हड्डां कूकड़काए इहदा मतलब मौत अंदरों पैदा होई। जे मौत ने किधरे बाहरों आउणा हुंदा असी कोई ना कोई जोर यतन प्रयतन जरूर कर दे कि मेरे घर दे अंदर मौत ना आवे। चलो जे मौत ने आउना ही है ते फिर गवांडियां दे घर विच आ जाए मैं ते बचिया रहा मेरे घर विच ते ना आवे ते खिमा चाहवांगा उम्र भावे 100 साल दी हो जाए शरीर बिलकुल जीरन कमजोर पुराना बिलकुल बोधा हो जाए पर बंदा फिर भी चाहुंदा है कि अजे जीवन होर चाहिदा है मौत दी मंग फिर भी नहीं है भावे 90 साल का हो जाए ना मौत की मंग फिर भी नहीं करता यह कहिंदा है होर जीवन चाहिदा है होर जीवन चाहिदा है। यही कारण है सिख धर्म के वेद व्यास भाई साहब भाई गुरदास साहब जी कह रहे ने रज ना कोई जीविया कूड़े पर वासे। फिर हर मरण वाले दे कन्ना विच जाके एक प्रश्न करो कि बाबा 90 साल 95 साल की उम्र भोग के जा रहा है खुशी खुशी जा रहा है जा जाने दे उते अफसोस है। हजारां विचों किसे विरले दा जवाब आएगा कि जान दे उते कोई अफसोस नहीं है इतराज नहीं है चलो जाना से जुबानों कहना होर गल है मन दी उदी भावना नोट करो मन नूं पढ़ो मन ही कहेगा कि अजे जीवन चाहिए है अजे अखां होर वेखना चाहुंदियां ने जुबान बोलना चाहुंदी है दंद चबाउणा चाहुंदे ने असीं खाणा चाहुंदे आ भावें मेदा पचाउण तों जवाब दे गए खाण दी तमन्ना बाकी है ਭਾਵੇਂ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ ਪਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਤਮੰਨਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਗਲਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰੀਰ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸਾਹ ਦੇਣਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭੋਗਣ ਦੀ ਅਜੇ ਤਮੰਨਾ ਬਾਕੀ ਖਿਮਾ ਚਾਹਵਾਂਗਾ ਇਹ ਤਮੰਨਾ ਇਹ ਲਾਲਸਾ ਬਾਕੀ ਹੈ मर के कोई राजी नहीं जीवन सारे लोड़दे ने मर के कोई भी राजी नहीं है किसे अखीर ते पहुंचे हुए मनुख नू प्रश्न करके वेखो यही कहेगा कि जान दी अजे तमन्ना नहीं है अजे जीवन चाहिदा है ते होर जीवन चाहिदा भावे शरीर दा बेड़ा जर्जरा कमजोर पुराना हो जाए इहदे अंग अंग दे अंदर रोग होण अखां दर्द नक दर्द कन्ना तो सुने ना लत्तां तो चलिया ना जाए बावा कुछ करन दी समर्था ना रखन ना बोलिया जाए ना वेखिया जाए पर तमन्ना बाकी है। पैसा भाई गुरदास साहब जी ने एक बचन होर भी कहा है, वह कहिंदे ने अन्ना बोला पिंगला तन थका मन दह दिस तावै, मन अजे दौड़दा है, मन शरीर नूं छड्डन वास्ते तैयार नहीं है। पर परमात्मा दी नेत दे मुताबक भावें असीं राजी हां या नहीं राजी, जदों मौत आ जांदी है शरीर छड्डना ही पैंदा है, भावें हस के छड्डदी है रो के छड्डदी है शरीर छड्डना ही पैंदा है। मैं एक वक्त 2001 दी घटना नूं बयान कर रहा, मैं महीने को वास्ते आया सां गलीड़ा रोड दे उते। एक बजुर्ग माता मेरे कोल आई, उन्हें एक छोटा जिहा बच्चा अपनी उंगली दे नाल लाया, तकरीबन 5-7 साल दी बच्चे दी उम्र होनी है। मैनूं ओह घटना बड़ी चंगी तरह याद है। ओह माता मेरे कोल आई, ज्ञानी जी अरदास करवाउणी है ते करवाउणी वी तुहाडे कोलों है। मैं कहा माता मैं अरदास करदा नहीं हां, मेरी जिम्मेवारी भी नहीं है, ग्रंथी सिंघां नूं संपर्क विच लो, अरदास करवाउणी वी तुहाडे कोलों। पुछिया मां अरदास की, कहन लगी ए मेरा पड़पोत्र है, पोतरे दा भी पुत्र ए पड़पोत्र है, अरदास करो कि मैं इस पड़पोतरे दा व्याह वेख के ते फिर मरां। मैं क्या माता ए अरदास ते होनी नहीं, अपना व्याह वेख्या तां मन नहीं भरिया, सखियां सहेलियां दा व्याह वेख्या तां मन नहीं भरिया, धीआं पुत्रां दा व्याह वेख्या तां मन नहीं भरिया, पोतरियां पोतरियां दा व्याह वेख्या तां मन नहीं भरिया। एक पड़पोतरे दा व्याह वेखण तों बाद तमन्ना ने रुकना नहीं है, वासना ने रुकना नहीं है, जीवन दी लालसा है, मरण वास्ते कोई राजी नहीं हुंदा। 95 साल दी आरजा हो जाए ते बंदा 95 साल दे अंदर भी जन्मदिन दी अरदास करांदा है। 95 साल पहला घटना घटी सी जन्म वाली, 95 साल पहला, ओ 95 साल पहला जेड़ी घटना घटी सी ओ दिन ते चेते करदा है, जन्मदिन दी अरदास करांदा है, जन्मदिन मनांदा है, हालांकि ओ 90-100 साल पहला दी घटना है। मौत का भरोसा ही नहीं है, 95 मिनटा बाद आ जाए, सकेंटा बाद आ जाए, हुणे आ जाए, पल बाद आ जाए, पर मौत का ना कन्ना दे अंदर पैंदियां सार अंदरों हिल जांदा है, कंब जांदा है, नहीं नहीं नहीं अजे ते जीवन दी तमन्ना है, अजे मैं मरना नहीं चाहुंदा। तो भगत फरीद साहब जी कहन लगे जो ताकतवर देवता है मौत का, ये जद आ जांदा है ते फिर ये गले नूं दबा देंदा है, सवासां दी माला बिखर जांदी है, इनू नाल चलना पैंदा। इस तों अगे बाकी दे बचे सलोक इहदी व्याख्या आउण वाले कल नूं मैं
1: लंघन देहु प्रभ कर तो उदर गोपाल मोह निर्गुण मत थोरिया तू सद ही दीन दया जो आवत शरण ठाकुर प्रभ तुमरी किसे राखो हो कृपा तार जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो राखो हो लाज मुरार वाहे गुरु साहिब जीओ जित दिहाड़े तन बरी साहे लय लिखाए मलक जे कन्नी सुनींदा मोह दिखाले आए जिंद निमानी कढ़िया

0: ਸੀਨਾ ਮੈਗਲ ਵਰਗਾ ਉਹਨੇ ਚਿੰਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਹੰਕਾਰੀ ਮਨ ਹਾਥੀ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮਨ ਕੀੜੀ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਣਿਆ ਤੇ ਮਿਣਿਆ ਗਿਆ, ਨਿਰਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਿੰਨ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਚਿੰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਰੀਕ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੱਥਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਹੰਕਾਰੀ ਹਾਥੀ ਵਰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਪਾਲੇਗਾ ਤੂੰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਤੂੰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਯੋਗ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਗਲੀ ਅਤ ਪੀੜੀ ਲੇਖਾ ਲੀਜੇ ਤਿਲ ਜਿਉ ਪੀੜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਾਸ ਬਣਿਆ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ? ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ, ਕੋਈ ਔਗਣ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਇਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੌਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਅਗਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਪੁਰਸ ਲਾਤ ਕੰਨੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਆਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਨੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਆਏ। ਫਰੀਦਾ ਕੀੜੀ, ਕੀੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਵਾਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਕੀੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਕੀੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਇਹ ਕੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਰੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਰੀਦਾ ਕੀੜੀ ਪਵੰਦਈ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀੜੀ ਪਵੰਦਈ ਖੜਾ ਨਾ ਆਪ ਮੁਹਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੂੰ ਠੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ, ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖ, ਮੁਹਾਏ ਠੱਗਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇ ਕੌਣ ਰਹੇ ਨੇ? ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਗ ਰੇ ਮਨ ਜਾਗਣ ਹਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਗ ਲੇ ਹੋ ਰੇ ਮਨਾ, ਜਾਗ ਲੇ ਹੋ ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ, ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗ ਹੀ ਸੋਪੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਆ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਰੀਦਾ ਕਿੜੀ ਪਵੰਦਈ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖੜਾ ਨਾ ਆਪ ਮੁਹਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਖੜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੱਗਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਸੀ ਭਗਤ।
1: ਹੇ ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਜਗਤ ਗੁਰੂ, ਏ ਸੰਸਾਰ ਤਾਪ ਹਰਨ ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ ਸਭ ਦੁਖ ਹਰੂ, ਏ ਸ਼ਰਨ ਜੋਗ ਦਿਆਲੈ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਮਯਾ ਕਰੂ। ਸਰੀਰ ਸੁਵਸਥ ਖੀਨ ਸਮੇ ਸਿਮਰੰਤ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਦਮੋਦਰ ਮਾਧੁਵੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਫਰੀਦਾ ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਗਾਖੜੀ, ਚੱਲਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਪਤ ਬੰਨ ਉਠਾਈ ਪੋਟਲੀ, ਕਿੱਥੇ ਵੰਜਾਂ ਘੱਤ ਫਰੀਦਾ ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਗਖੜੀ, ਚੱਲਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਪਤ बन उठाई पोटली किथे बंजा कत किजना बुझे है किजना सूझे दुनिया गुजी पाहे साई मेरे चंगा कीता नहीं ता हम भी दजा आहे साई मेरे चंगा कीता नहीं ता हम भी दजा आहे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र गोद दा आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी श्रोते जनो आप सरवण कर रहे से भगत फरीद साहब जी दी बाणी विचों उन्ना दे मुबारक हिरदे विचों उठे हुए वलवले और उन्ना दी मुबारक रसना दे कहे हुए बचन। भगत फरीद साहब जी दी बाणी नू बहुत ध्यान दे के पढ़िए विचारीए ते भगत फरीद साहब जी ने अपनी रसना दे नाल जो बचन कहे उन्ना बचना दे अंदर दुनिया दे बहुत सारे विषयां नू छोण दा यतन कीता। कदी किसे सलोक दे अंदर मौत दा जिकर किसे सलोक दे अंदर जीवन दा जिकर किसे सलोक दे अंदर गुनाहां दा जिकर किसे सलोक दे अंदर गुणा दी गल किसे सलोक दे अंदर पखंडवाद दी चर्चा किसे सलोक दे अंदर परमात्मा हृदय दे अंदर है इस गल दी चर्चा। भगत फरीद साहब जी ने बहु पक्षी जीवन नू बहु पक्खां दे नाल वेख के सुधारन दा यतन कीता है। जिस भी पक्ष तो भगत जी नू कोई कमी पेशी आम दुनिया दे जीवन दे अंदर नजर आई रड़कदी दिसी उसे ही एंगल तो तमाम भगतां ने अपनी अपनी बाणी दे जरिए गुरु साहिबाना ने अपनी बाणी दे जरिए मनुखता दी झोली दे अंदर उच्चा ते सुच्चा ज्ञान पा के मनुखता नू नवाजिया। अज दे महावाक दे अंदर भगत फरीद साहब जी दा उपदेश कहन लगे फरीदा दर दर वेशी गाखड़ी। दरवेश दा अखरी अर्थ हुंदा है रब दे दर दे उत्ते खड़िया होके मंग करन वाला रब दा मंगता रब दा जाचक दरवेश दा अखरी अर्थ ए हुंदा है। पर आम किसे दूसरे दरवाजे ते नहीं किसे बादशाह दे दरवाजे ते नहीं जो परमात्मा दे दर ते खड़ा होवे और मंग भी करे केवल इको ही परमात्मा तेरे मिलाप दी चाहना है और कोई चाहना बाकी नहीं बचे उन्हों कह देंदे ने दरवेश। दर दर वेशी गाखड़ी चलना दुनिया पत कहन लगे आम मनुखता दे अंदर विचरदिया होया नजर मैनू ए आया कि मनुखा दे नाम दे नाल लफज ते दरवेश जुड़िया या दरवेश लफज जोड़िया गया पर उन्ना दी तरजे जिंदगी नू वेखो जीवन दी चाल नू वेखो ते ओ आम दुनियादारां वाली चाल उन्ना दे जीवन विचो नजर पेंदी। इत्थे मैं एक दो बेनतियां आप संगत दे सन्मुख करदा चला अगर गुरु साहिबाना नू भगत जना नू आपां बाहरों वेखिए ते बाहरों वाकई दुनिया वर्गी चाल है कोई फर्क नहीं है और भगत दी चाल एक दरवेश दी चाल बाहरों रहनी भी आम दुनिया वर्गी चाहीदी है पर अगर अंदरों वेखो ते अंदरों नरोल खुदा दे नाल मिले हुए खुदा वर्गे नजर पेंदे ने अगर अंदरों वेखो। बाहरी तौर दे उत्ते गुरु साहिबाना तो मैं गल प्रारंभ करा बाहरी तौर दे उत्ते वेखो असी भी ग्रिस्ती ते साडे दसे दे दसे गुरु साहिबान ग्रिस्ती अगर ग्रिस्त मार्ग नूं अख्तियार नहीं कीता ते उमर दे तकाजे दे नाल धन श्री गुरु हरकृष्ण पातशाह महाराज जी ने ग्रिस्त मार्ग नूं प्रवान नहीं कीता। इस तरह नहीं कि उन्होंने हृदय विचों प्रवान नहीं कीता, उमर दे लियाजे दे नाल उस मार्ग नूं अपना ना सके। तकरीबन पौने 8 साल की उम्र के अंदर ते ज्योति जोत समा जांदे ने 8वें हजूर गुरु हरकृष्ण पातशाह महाराज। और फिर मैं एक होर भी बेनती करा, तकरीबन 22 साल का लम्मा समा 4 उदासियां दे अंदर 4 फेरियां दे अंदर तकरीबन 22 साल का लम्मा समा धन श्री गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी घरों बहर भी रेंदे ने और आए भी जगत जलंधे नूं ठारन वास्ते ने। ते फिर ए भी कोई नहीं कह सकता कि धन श्री गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी दे मुबारक पवित्र हिरदे दे अंदर कोई मैल दा अंश बाकी सी। मैल उन्हां दे नेड़े तेड़े नहीं है, वासना उन्हां दे हृदय विच बाकी बची नहीं है, कोई आश कोई तरंग कोई उम्मीद उस पवित्र हिरदे दे अंदर नहीं है। उन्हां दे कोल इस मार्ग नूं अपनाउण वास्ते समां भी नहीं। मैं अज जिहड़ियां बेनतियां करनियां ने जां गुर इतिहास विचों ते जां गुरबाणी नूं आधार बना के मैं अपने कोलों कुछ भी कहण दा यतन नहीं करना, क्योंकि विशा ही बड़ा पेचीदा विशा है। तो खैर, गुरु नानक पातशाह महाराज जी दे कोल समा ना हुंदिया होया वी फिर भी उन्होंने इस मार्ग नूं अख्तियार कीता, मार्ग नूं अपनाया। क्यों अपनाया? क्योंकि आउण वाले कल नूं जो लोग मेरे मगर मगर चलदे आ रहे ने उन्हां नूं इह कहण दा समा ना मिले कि ग्रिस्त मार्ग माड़ा हुंदा है, ग्रिस्त मार्ग बुरा हुंदा है, उन्हां नूं इह कहण दा समा मिले ना। क्योंकि अक्सर असीं चलने अपने वड्डियां वडेरियां दे चिहन कदमां नूं वेखदे होए, अक्सर आपां चलने आ जिहड़े वड्डियां वडेरियां ने पूरने पाए ने, गुरु साहिबाना ने पैगंबर जना ने जिथे कदम टकाए ने उन्हां कदमां दे चिन्ह वेखदे होए, मेरा मतलब उन्हां गल्लां बातां नूं मनदे होए उन्हां नुक्तियां सिद्धांतां नूं अपनाउंदे होए अक्सर मनुख चलदे ने। अगर कोई हिंदूइज्म दे अंदर चल रहा है तो वह श्री राम ते श्री कृष्ण जी दी गल करके चल रहा है। अगर कोई बुद्ध धर्म दे अंदर चल रहा है तो वह गल करदा है पहला महात्मा बुद्ध दी, महात्मा बुद्ध इस तरह चलदे रहे, महात्मा बुद्ध इस तरह करदे रहे, फिर वह जीवन की चाल चलनी शुरू कर देंदा है। अगर कोई जैन मत दा धारनी बन के चल रहा है ਉਹ ਇਹ ਉਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਾਵੀਰ ਜੈਨ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਜੈਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਸਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋਣਾ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਨਹੀਂ। अगर कोई ग्रिस्त मार्ग नूं छड के चलन दा यतन कर रहा है, मैं ही कहांगा वो पहले कदम दे उत्ते भटकदा होया नजर पै रहा है, पहले कदम दे उत्ते थिड़क गया है। क्योंकि गुरु साहिबाना ने जद इह मार्ग अपनाया है असीं इस मार्ग नूं नफरत करनी, असीं इस मार्ग नूं माड़ा कह के इस मार्ग नूं छड देना ते इक दूसरा मार्ग अपना के अपने आप नूं ज्यादा पवित्र जान लेना, दूजियां नालों महान ते अगे मन लेना, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗ੍ਰਿਸਤ ਮਾਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗ੍ਰਿਸਤ ਮਾਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ, ਦਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗ੍ਰਿਸਤ ਮਾਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ, ਜਿੰਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮੈਂ ਲੜੀਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੀ 6 ਲੜਕੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ, 8 ਸੰਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਸਤ ਮਾਰਗ ਦਾ ਸਾਧੂ ਬਣਾਇਆ, ਗ੍ਰਿਸਤ ਤੋਂ ਤਿਆਗੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਧੂ ਬਣਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਆਖਿਆ ਗ੍ਰਿਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਧੂ ਬਣ, ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਖੈਰ, अगर बारों वेखिए गुरु साहिबाना नूं ते बारों उन्हां दे घर दे अंदर सुपत्नी, उन्हां दे घर दे अंदर तियां दा जन्म, उन्हां दे घर दे अंदर पुत्रां दा जन्म, उन्हां दी जेब दे अंदर साडे नालों धन ज्यादा, उन्हां दा घर बार साडे नालों चंगा, उन्हां दे घर दे अंदर साडे नालों पदार्थ भी वधीक, भावें संगतां ही लियांदियां ने पदार्थ भी वधीक, माया वध परिवार कुटुंब कबीला मैल माड़ियां दे अंदर वसदे होए गुरु साहिबान नजर पैणगे। अगर बाहरले तौर ते वेखो, अगर अंदरों वेखो किसे दे कोल इन्नी बरीक बीनी बरीक निगाह होवे जो पातशाह नूं अंदरों वेख सके, ते अंदरों वेखोगे उह नरोल परमात्मा दे वर्गे नजर पैणगे। बाहरों संसारी नजर पैणगे, अंदरों निरंकारी नजर पैणगे। बाहरों वेखोगे मायावी नजर पैणगे, अंदरों वेखोगे ते माया दे पति खुदावंद करीम दे नाल जुड़े नजर पैणगे। मैनूं भाई साहब भाई नंद लाल साहब जी दा इक बचन चेते विच आउंदा है। ऐलानिया कहिंदे ने कि जाहर अंदर माइले फरजंद जन, फारसी दा लफज फरजंद, फरजंद कह दिंदे ने पुत्रां नूं, जन जजे दे पैर हेठ बिंदी ला के, जन जन दा मतलब औरत, ते जे बिंदी ना लाओ इकला पढ़िए जन, बिरथी कदे ना होवे जन की अरदास। इथे जन दा मतलब है सेवक, पर जिथे गुरबाणी दे अंदर आउंदा है जन पिसर पदर बिरादरां कसनेस दस्तंगीर, इथे जन ते जन दा मतलब हुंदा है औरत, फारसी दा लफज है। भाई नंद लाल साहब जी कहिंदे ने कि जाहर अंदर माइले फरजंद जन, गुरु साहिबाना नूं वेखो बारों बारों ते तुहानू नजर पैणगे कि उन्हां दे कोल जन वी है, जन दा मतलब औरत, उन्हां दे कोल फरजंद ने, फरजंद दा मतलब उन्हां दे शहजादे उन्हां दे साहिबजादे। पर कहन लगे दर हकीकत बा खुदाए खेस तन, कहन लगे हकीकत उन्हां दी ए नहीं है जो उन्हां नूं बारों वेख रहे हो। ते भाई नंद लाल साहब फिर उन्हां दी हकीकत है कि हकीकत विच नजर आ रहा है कि परिवार है, कुटुंब है, कबीला है, तियां ने, पुत्र ने, तन है, दौलत है। तुसी कह रहे हो सतगुरु साहिबाना दी ए हकीकत नहीं, सच्चाई नहीं। ते फिर हकीकत दे अंदर की, अगली पंक्ति विच भाई नंद लाल साहब जी कहिंदे ने दर हकीकत बा खुदाए खेस तन, अगर कोई उन्हां नूं बारीक बीनी दे नाल अंदरों वेख सके ते अंदरों नरोल खुदा वर्गे नजर पैणगे। दर हकीकत बा खुदाए खेस तन, अंदरों रब वर्गे नजर पैणगे। अज दे महावाक दे अंदर भगत जी कहिंदे ने फरीदा दर दर वेशी गाखड़ी, कहन लगे रब दे दर दा अगर दरवेश बनना है ते सौखी कार नहीं है। कहन लगे गाखड़ी, गाखड़ी दा मतलब बड़ी कठिन खेड है, आम खेड नहीं है। जितनी मंजिल महान होवे उस मंजिल दी प्राप्ति वास्ते साधना भी उन्नी महान करनी पैंदी है। अगर पदार्थ तुच्छ है, मंजिल तुच्छ है, ते उदी प्राप्ति वास्ते साधना भी तुच्छ दी करनी पैंदी है। आम साधना आम मेहनत करन तो बाद ओ मंजिल ओ पदार्थ हाथ विच आ जांदा है, क्योंकि पदार्थ दी कीमत बड़ी घट है। ते पदार्थ जिस पदार्थ दी कीमत थोड़ी उदी प्राप्ति वास्ते उन्नी मेहनत भी थोड़ी। जेड़ा पदार्थ अपने आप दे अंदर महान है, जिहड़ी मंजिल अपने आप दे अंदर महान है, महान मंजिल दी प्राप्ति वास्ते प्यारियो मेहनत भी महान ही करनी पैंदी, आम मेहनत दे नाल गल नहीं बनदी। अगर किसी ने दो अखर पढ़ने होण ना, ए बी सी डी चार अखर पढ़ने होण, ओ एक अद्धे दिन दे अंदर सीख सकदा है, अनजाण तो अनजाण बंदा भी सीख सकदा है। पर किसी ने पढ़द्यां पढ़द्यां डॉक्टर दी डिग्री लैनी या इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, ओनूं ते एक दिन दी मेहनत दे नाल डिग्री नहीं ना मिलन लगी, ओनूं ते एक मेहनत दे दौर विचों दी गुजरना ही पैना है। ओनूं एक मेहनत साधना दे दौर विचों दी निकलना पैगा, क्योंकि ओदी मंजिल महान है। परमात्मा सब तो महान है, श्रेष्ठ है, ते परमात्मा दी प्राप्ति वास्ते फिर सानू एक मेहनत दे दौर विचों दी गुजरना पैंदा है, ते ओ मेहनत दा दौर भी बड़ा कठिन है, आम नहीं है। असी करदे कि रब दी चाहत वास्ते अपने तन नूं,
0: ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਨ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਤਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਨ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲੋਂ ਕਰੋੜ ਗੁਣਾ ਅੱਗੇ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੈ, ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਮਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੈਰਲਰ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰ ਪਏਗਾ, ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫਰਕ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਪ੍ਰਤੰਗ ਤਕਰੀਬਨ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਦੋ ਹੀ ਨੇਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਨੇਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੀਵਾ, ਦੋ ਪੈਰ, ਦੋ ਕੰਨ, ਨੱਕ, ਮੂੰਹ, ਮੱਥਾ, ਚਮੜੀ, ਸਰੀਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਇਹੀ ਅੰਗ ਪ੍ਰਤੰਗ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਪਾਸ ਨੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਕੱਦ ਕਾਠ ਦਾ ਅੰਤਰ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨਮੁਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਆਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਿੱਟਾ, ਇਹ ਫਰਕ ਆਮ ਫਰਕ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮਨ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਨਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਂ ਬਦਲਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਜਿਸ ਤੁਲੰਬੇ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਤੁਲੰਬੇ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ, ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੱਗੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਠੱਗੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਠੱਗੀਆਂ, ਰਾਹ ਮਾਰ ਹੈ, ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਇੱਧਰ ਨਾ ਜਾ, ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨਾਮ ਦਾ ਆਦਮੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੱਗ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸੱਜਣ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੱਜਣ ਦਾ ਕੱਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਚਿਹਨ ਚੱਕਰ ਬਦਲੇ, ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਨਾ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਿਆ, ਨਾ ਨਕਸ਼ੋ ਨਿਗਾਰ ਬਦਲੇ। ਬਦਲਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਜਣ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਲਿਆ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਦਲਾਹਟ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਬਦਲ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਅੰਦਰ ਬਦਲਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਠੱਗ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਬਦਲਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸੱਜਣ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਬਦਲਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਚੋਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਬਦਲਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਾਧੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਰ ਬਦਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਰ ਸੁਧਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਕਰਕੇ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਿਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਲੈਣਾ ਤੇ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਿਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੋਤੀ ਲਾ ਲਵੇ, ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਲਕ ਸਜਾ ਲਵੇ, ਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਧਾਗੇ ਦਾ ਜਨੇਊ ਪਾ ਲਵੇ ਤੇ ਗੀਤਾ ਦੇ 18 ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਗੀਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਲੋਕ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਸੇਗਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੀਤਾ ਦੇ ਸਲੋਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੁੱਛਾਂ ਕਟਵਾ ਲਵੇ, ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਸਬੀਹ ਰੱਖੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰੇ, ਰੋਜੇ ਰੱਖੇ, ਚਲੀਏ ਕੱਟੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਪਏਗਾ, ਸੁੰਨਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਆਇਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਰਾਂ, जे कोई बारो पंज ककारी बाणा भी पा लवे, बारो गिट्टिया तक लम्मा चोला भी पा लवे, गल दे अंदर पंज सत जलाओ बनाउन वास्ते माला भी सुट लवे, बारो नजर आएगा ए बड़ा दरवेश है, बड़ा गुरमुख है, बड़ा प्यारा है, ते जे अंदर गुरबाणी दा एक वचन नाल लेके नहीं चल रहा ते फिर कहना पएगा इस तरह दा दरवेश सगों दुनिया नूं कुराए पाउण दा काम कर रहा है। इस तरह दा दरवेश जिदे अंदर कुछ नहीं पर बाहर है। गुरु बाबे ने सानू पहला अंदर सुधारण वास्ते हुक्म फरमाया, अपने मन नूं पहला सुधार, अंदर नूं पहला सुधार, ते जे अंदर नूं सुधार लवेगा तेरे तन दे उत्ते होवे बाणा, तन दे उत्ते नजर आवे तन नूं वेख के बड़ा चंगा है, गुरमुख है, लोक तेरे नेड़े लगन, तेरी संगत दी रंगत कबूल करन, लोकां दा जीवन बदले, तेरे जीवन दे असर नूं पा के लोग कहणगे बड़ा चंगा है, पर नतीजा उल्टा निकलदा नजर आ रहा है। जद लोग दूरों वेखदे ने ते दिसदा है कि बड़ा चंगा है, ते जद लोग तेरे नेड़े होके तेनूं वेखदे ने नजर आ जांदा है चंगा नहीं है, परम सी भुलेखा सी जो उड गया है। धन गुरु अर्जन देव साहब जी दा एक वचन मैं तुहाडे सामने रखदा चलां। गुरु अर्जन देव साहब जी ने एक जिमीदार दी उदाहरण दे के सानू समझाउण दा यतन कीता है। कहन लगे अनिक बस्तर सुंदर पहराया, ज्यो डरना खेत माहे डराया। कहन लगे एक जिमीदार दे खेत सन बहुते, उन्हें कई खेतां दे अंदर बीज बीज दिता, कणक दा बीज, दूजा तीजा बीज, फसलां फुल्लां फलां दे बीज उन्हें अपने कई खेतां दे अंदर बीज दिते। होया कि जिमीदार ने वेख्या कि मेरे बीजे हुए बीज नूं कबूतर चुगदे ने, कां चुगदे ने, चिड़ियां चुगदियां ने, परिंदे आउंदे ने, बीज चुकदे ने, उडारी भर जांदे ने, ते मैं इकल्ला, खेत बहुते ने, इन्हां खेतां दी रखवाली करां ते किवें करां। जिमीदार दे हिरदे दे अंदरों एक तजवीज़ दा जन्म होया, उहदे अंदरों एक सोच दा जन्म होया, उन्हें कखां कानां दा पुतला बनाया, का फूस इकट्ठा करके ना उन्हें पुतला बनाया, ते उस पुतले दा सिर भी बनाया, उस पुतले दियां बाहां भी बनाईयां, उस पुतले दियां लत्तां भी बनाईयां, ते फिर कीता कि उस पुतले दे सिर दे उत्ते ना एक कपड़ा भी रख दिता, उस पुतले नूं एक फटिया पुराना कमीज चोला भी पवा दिता, उस पुतले नूं गड़ दिता एक खेत दे दरम्यान जाके, और सोच ए काम कर रही सी कि जेड़ियां चिड़ियां कां कबूतर ने परिंदे ने इन्हां नूं इस गल दा भुलेखा बनिया रहे कि खेत दा मालक जिमीदार खेत दे अंदर है, असी दाणा चुगांगे ए सानू मारेगा, असी दाणा चुगण वास्ते जाना नहीं, इह डरदे डरदे परां परां ही उडारी भर के चले जाण, नेड़े आउण ही ना। होया ए कि चिड़ियां कां कबूतर डरदे रहे, उस पुतले नूं वेख के भय खांदे रहे, ते दाणा चुगण वास्ते ना आए। हुण कां बड़ा चलाक है, बड़ा चलाक परिंदा है कां, और बड़ा सियाणा है। आखर हवा दा एक बुल्ला आया, तेज हवा दा झोंका आया, उस हवा दे नाल पुतला जमीन दे उत्ते डिग पिया, उहदे जिहड़े पाए हुए कपड़े सन उह वी उड गए, उहदे जिहड़े बने हुए बनावटी अंग सन उह वी बिखर गए, ते ओ जेड़ा कां सी ना मैले वाली चुंज उस पुतले दे उत्ते बह के सवारनी शुरू कर देंदा है। गुरु अर्जन देव साहब जी ने वचन फरमाया, कहन लगे ओ बंदे जिन्हां दे कोल केवल लिबास है, पहरावा है, अंदर धर्म दी जोत नहीं जग रही, कहन लगे उस पुतले तो वध कुछ भी नहीं है। जिवें ओ पुतला बेजान है, है ता पुतला पर बेजान है, उहदे अंदर जान नहीं, सवास नहीं चल रहा, उन्हां नाड़ां दे अंदर खून गर्दश नहीं कर रहा, उहदे अंदर दिल दी धड़कन जारी नहीं है, ओ मुर्दा निर्जीव पुतला है। कहन लगे जिस मनुख ने बाहरों केवल लिबास पाया है, पहरावा सजाया है, पर उहदे अंदर धर्म दी जोत नहीं जगदी, बाणी दा असर नहीं, बाणी दा सिद्धांत नहीं, बाणी उहदे अंदर चल नहीं रही, परमात्मा दी याद उहदे अंदर लगातार चलदी नहीं, कहन लगे उस पुतले नालों वध नहीं है, पुतले वरगा ही है। ते हजूर ने लानिया कह दिता, अनिक बस्तर सुंदर पहराया, जो डरना खेत माहे डराया। कहन लगे जिवें डरावना खेत दे अंदर है, इवें ही ओ बंदा है जिन्हें बारों बारों लिबास बनाया है पर उहदे अंदर नहीं है। मैं फिर एक बेनती करा गुरबाणी दे वचना नू उलंघ के अर्था नू मरोड़ त्रोड़ के करा ए मेरी इमानदारी भी नहीं होएगी ते मैं संगत दा विचोर ते तां गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दा विचोर होवांगा। क्योंकि जे भगत फरीद साहब जी कह रहे ने कि दर दर वेशी गाखड़ी ते फिर मैनू ए अरते तुहाडे सामने रखने ही पैणगे। आप बर्दाश्त करो ना करो अरते मैनू करने ही पैणगे ना इस पंक्ति दे अरत। हुण एक वचन मैं गुरबाणी दे अंदरों होर तुहाडे सामने रखदा चलां। गुरबाणी ए कहिंदी ए कि दिल दर वाणी जो करे दिल दर वाशी रास दिल दर वेशी रास इश्क मोहब्बत नानका लेखा करते पास। दिल दर वाणी जो करे दिल दर वेशी रास कहन लगे जो अपने अंदर दी रखवाली करदा है। मैं फिर बेनती करा अंदर दी रखवाली मन दी रखवाली। मन मेरा काम वाल ना जाए मन मेरा निंदा वाल ना जाए मन मेरा झूठ वाल ना जाए मन मेरा बुराइयां वाल ना जाए मन मेरा लोभ दे अंदर मस्त ना रहे मन विच कोई बुराई ना रहे। गुरबाणी दा वचन है दिल दरवानी जो करे दरवानी दा मतलब राखी करना जो अपने अंदर दी राखी करदा है। दिल दरवेशी रास ते फिर मन करके राह दे उत्ते चल रहा है ते चल केड़े राह दे उत्ते रहा है जेड़ा राह निरंकार दे घर नूं जांदा है ओ राह मिलदा कित्थों है तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे बचना विचों। जो अपने अंदर दी राखी कर रहा है और जो रब जी दे राह दे उत्ते सही ढंग दे नाल चल रहा है गुरबाणी ए कहिंदी है ओदा इश्क मुबारक है ओदा लेखा करते दे पास है मतलब करता ओनू अंदरों जानदा है ते करता पुरख वाहिगुरु दी ओ रहमत दा पात्र भी बन जाएगा ओ करता पुरख वाहिगुरु दी बख्शिश दा पात्र अवश्य बनेगा। एक वचन मैं भगत फरीद साहब जी दे तुहाडे सामने होर रखना चाहवांगा। ओ कहिंदे ने फरीदा साहिब दी कर चाकरी दिल दी लाहे प्रांद। भगत फरीद साहब जी दा वचन कहन लगे फरीदा साहिब दी कर चाकरी चाकरी मैंने सेवादारी कर चाकरी मैंने नौकरी कर चाकरी मैंने गुलामी कर कहे कबीर गुलाम कर का जी आए पावे मार। भगत जी कहन लगे साहिब दी कर चाकरी अपने साहिब दा धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा चाकर बन ते चाकर बनन दा मतलब है गुलाम बन गुलाम दा मतलब है जो हुक्म गुरु कहन उस हुक्म नू मनना है कोई उक्ती कोई युक्ति कोई अपील कोई दलील कोई किंतु कोई विंतु लेकिन वेकिन करन दी लोड़ ना होए गुरु ने कह दिता है काम करना है ते करना है ओदे अगे अपील दलील करन वास्ते मन कोई प्रश्न उठाए ना। आख्या साहिब दी कर चाकरी दिल दी लाहे प्रांद अपने अंदर जेड़ी लगी हुई मैल है ना मैल नू ला काम क्रोध लोह मोह निंदा चुगली ईर्षा बखीली ठगी ठोरी हेरा फेरी तरह तरह का बुरा सोचना बुरा चितवना बुरा करना कहन लगे ओ अंदर दी मैल नू ना बाहर कर दिल दी लाहे प्रांद। अगला बचन कहन लगे दरवेशा नू लोड़िए रुखा दी जी रांद। दरवेश ओ है जिदा जिगरा जिदा रिदा विशाल है ते किस तरह का विशाल है भगत फरीद साहब एग्जाम्पल दे रहे ने रुखा दी जी रांद जिदा जेरा जिदी बर्दाश्त ताकत एक रुख वर्गी है। रुख नू लोग पत्तिया नू तोड़न ता नहीं फुला नू तोड़न ता कोई नहीं जे कोई फल कच्चा तोड़ लवे ता कोई नहीं फल पक्का तोड़ लवे ता कोई नहीं। फल तोड़न लग्या कदी कदी बच्चे रुख दी टहनी तोड़ के रख देंदे ता कोई परवाह नहीं कदी कदी लोहार आरी लेके चला जांदा है उन्हूं कटना शुरू कर देंदा है ते ता कोई नहीं। मैं मारू राग दे अंदर साहिब श्री गुरु नानक साहब जी दा एक बचन पढ़िया ते पढ़ के हैरान होया कि पातशाह दरवेश इन्हू कहिंदे ने असी ते गलती दे अंदर खड़े हां। हजूर कहन लगे शस्त्र तीखण तीखण मैंने तिखे शस्त्र मैंने हथियार शस्त्र तीखण काट डारियो मन ना कीनू रोस। रुख दी गल कर रहे ने गुरु नानक साहब ते रुख दी गल कर रहे ने भगत फरीद साहब। भगत फरीद साहब कहिंदे ने दरवेशा नू लोड़िए रुखा दी जी रांद ते इधर गुरु नानक साहब जी रुख वास्ते कह रहे ने ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੀਖਣ ਕਾਟ ਡਾਰਿਓ ਮਨਨਾ ਕੀਨੋ ਰੋਸ। ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਫੱਟੇ ਬਣਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਜੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਤਨ ਬਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਲ ਕਾਂਟਾ ਠੋਕਿਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹਨੇ ਬੇੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕੱਟਿਆ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦਾ ਦਿਲ ਵੇਖੋ, ਉਸ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਡੋਬਦਾ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਤਬੀਅਤ, ਦਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਹਿਰਦਾ, ਦਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੀਖਣ ਕਾਟ ਡਾਰਿਓ ਮਨ ਨਾ ਕੀਨੋ ਰੋਸ, ਕਾਜ ਉਹਾਂ ਕੋ ਲੇ ਸਵਾਰਿਓ ਤਿਲ ਨਾ ਦੀਨੋ ਦੋਸ਼। ਉਹਨੂੰ ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਲ ਠੋਕੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ ਬਣਾਈ, ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਡੋਬਾਂਗਾ ਤੇ ਡੋਬਾਂਗਾ ਦਰਿਆ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਦਾ ਤਿਲ ਭਰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਦਰਵੇਸ਼ ਕਹਿਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਜਗਤ ਨੇ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਖੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਟਾਂ ਵੱਟੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਚੇ ਤੇ ਕਮਲੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ, ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬਨਾਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਬੋਰਾ, ਕਬੀਰ ਬੋਰਾ, ਕਬੀਰ ਬੋਰਾ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੇ, ਸਰਮਦ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੇ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਖੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲਪਦੇ ਹੋਏ, ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੁਰਜਦੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕਦਮੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਕੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤਨਾ, ਕੋ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ, ਜਗਤ ਦੇ ਭੂਤ ਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆ ਭੂਤਨਾ ਹੈ। ਕੋ ਕਹੇ ਭੂਤਨਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤਨਾ, ਕੋ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ। ਬੇਤਾਲ ਜੋ ਸਾਜ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਹਥੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੋੜੀ ਦੇ ਪੁੜੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਰ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋੜੀ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵਜਾਉਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ। ਸਰੰਗੀ, ਰਬਾਬ, ਸਰੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਜ ਅਗਰ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਗ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਜ ਸੁਰ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਰੋਤੇ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਨੰਦ। ਆਏ ਸਨ ਬੇਤਾਲੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬੇਸੁਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਤਾਲਾ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਪੂਤਨਾ, ਕੋ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ, ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ ਪਿਆ ਦਵਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾ ਨਾਨਕ ਬਹੁਰਾਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਸਤਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਵਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੂਤਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਸਤਗੀਰ ਵਰਗੇ ਇੱਟਾਂ ਵੱਟੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਏ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੀ ਰਾਂਦ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਇੱਟਾਂ ਵੱਟੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਬਚਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲਣ, ਇਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ भाई साहब भाई मरदाना जी कर देंदे ने प्रश्न। वो कह देंदे ने बाबा असी इन्हां लोकां दा भला कर रहे हां, अपना घर छड्या, परिवार छड्या, तियां पुत्तर छड्डे, बच्चे छड्डे। गुरु नानक साहब भी गृहस्थी ते भाई मरदाना साहब भी गृहस्थी, उन्हां दे भी दो साहिबजादे ने भाई रजादा जी ते भाई सजादा जी। गुरु नानक साहब जी दे दो साहिबजादे ने बाबा श्री चंद जी ते बाबा लखमी दास जी। आखिया आपां घर बार छड्डिया, मां बाप छड्डे, तियां पुत्तर छड्डे, आए आ इन्हां दा भला करन लई, ते उल्टा सानू मंदा बोलदे ने, उल्टा सानू गाली गलोच करदे ने। मुस्कुराउंदिया होया कहन लगे मरदानिया, जदों कोई पागल बंदे दा वैद जां डॉक्टर इलाज करदा है ना, ते ओ पागल डॉक्टर नूं वैद नूं मंदा ही बोलदा है, क्योंकि होया जो पागल समझदार ते होया ना। अगर समझदार दा इलाज होवे, समझदार ते करेगा धन्नवाद, जेड़ा बंदा है सूझ सियाणप रखण वाला ओ ते कहेगा तुहाडा शुकराना है, तुसीं इह चंगा उपदेश मेरी झोली विच पाया है। पर जेड़ा अति मूड अति पागल है, ओ मारन वास्ते आएगा, इन्हें सच दी गल कीती क्यों है, ओ हथियार चुक के आ जाएगा, इहदा गला बंद करो, इहदा बोलना बंद करो। गुरु नानक साहब जी नाल इस तरह हुंदा रहा। गुरु नानक साहब कहन लगे मरदानिया, जदों कोई वैद पागल दा इलाज करन लई जांदा है ते ओ मंदा ही बोलदा है, उस वैद ते कदी कदी ओ हथी वी पै जांदा है, ते वैद अपना गुण ना छड्डे, ओ तां ही चंगा वैद है, ओ तां ही सुगड ते सुजान वैद है। ते जे उस पागल दा इलाज करदा करदा अपने गुण नूं ही गवा पवे, ते फिर ओ वैद कादा हो जा। लोग कहणगे ओ ते है पागल, पर तूं ते वैद है ना, तेरे कोल ते गुण है। तो खैर भगत फरीद साहब जी कहन लगे, दरवेशां नूं लोड़ी है रुखां दी जी रांद। एक बेनती मैं इस संबंध दे अंदर होर भी करदा चला, दरवेश लिबास पा के बनना बड़ा सौखा है, बाहरों बनना, इनू मैं दूजे लफजां दे राही बयान करा, लिबास पा के दरवेश अखवाउणा लोकां दे कोलों बड़ा आसान है, ते अंदरों मन करके दरवेश बन जाना ओना ही कठिन है, ओना ही महान है। जिन्ना जल्दी तन धर्म की दुनिया में चला जाता है ना, उन्नी जल्दी मन धर्म की दुनिया में नहीं जाता। ते जिहदा मन धर्मी बने ही ना, मन धर्म नूं कबूल करे ही ना, मन धर्म के नेम नुकते अपनावे ही ना, वो बाहरों किस तरह का पहरावा बनाई रखे, कुछ अखवाई जाए, वो कादा दरवेश होया। हां लोग तेनू लख सलामा करन, पर खुदावंद करीम दे घर दे अंदर परवान नहीं पएगा, क्यों? क्योंकि गुरु तेरे अंदर दा सुधार मंगदे ने, गुरु तेरे मन दा सुधार मंगदे ने, ते मन दा सुधार करन लई गुरबाणी दा उपदेश है। अगां भगत जी कहन लगे, फरीदा दर दरवेशी गाखड़ी चलना दुनिया पत, मैं वेखिया लोग चल रहे ने आम दुनियादारा वांग। किवें चल रहे ने दुनियादारा वांग? इह ते बेनती मैं कर ही चुका ना, कि बाहरों दरवेश ने चलना ही दुनिया वांग है। बाहरों दरवेश सच्चा होवे जो गृहस्थी होवे, बाहरों दरवेश सच्चा होवे जो तियां पुत्रां दा पिता होवे, बाहरों दरवेश होवे जिहदे घर दे अंदर पत्नी होवे, बाहरों दरवेश ओ है जो अपने महल माड़ियां दे अंदर रसदा वसदा होवे। पर ओ दरवेश केवल बार बार दा, अंदरों दरवेश ओ है जो सच दे नाल जुड़िया होवे, बुराइयां तो बचिया होवे, गुणां दी माला परो के अपने मन दे अंदर वसाई होवे, अंदरों दरवेश हो। चलना दुनिया पत, बाहरों ते चलना है दुनियादारा वांग, अंदरों वखरे होके चलना है, अंदरों दुनियादारा वांग नहीं चलना। अंदर दुनिया चुगली निंदा ईर्ष्या दी भरी है, पर दरवेश दे अंदर ना चुगली ना निंदा ना ईर्ष्या होवे। अंदरों दुनिया दे अंदर खोट है, पर दरवेश दे अंदर कोई खोट ना होवे। अंदरों दुनिया दे अंदर अगर मन करके वेखिए ना आम दुनिया नूं, ते दुनिया दे अंदर कोई अपना है कोई बेगाना है, जेड़े अपने ने उन्हां नूं प्यार, जेड़े बेगाने ने उन्हां तों नफरत, पर जेड़ा दरवेश है ओदी दुनिया दे अंदर सारे अपने ने, ओदे वास्ते कोई बेगाना नहीं है, ओदे वास्ते सारे ही अपने ने, ओदे मन दे अंदर सारिआं वास्ते जगह होवे। कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई यहूदी नहीं, कोई बौद्धी नहीं, कोई पारसी नहीं। ते जड़ा बड़ी सोच नू सीमित करके चल रहा है, बड़े छोटे दायरे वे चल रहा है,
1: खिमा चाहवांगा ओ सच्चा दरवेश जिस तरह का गुरु नानक साहब जी ने बनाया है उस तरह का दरवेश नहीं होगा। जे गुरु नानक साहब जी का उपदेश सारिया लई सांझा खत्री ब्राह्मण शूद वैश उपदेश चौं वर्णा को सांझा ते रब दे सच्चे दरवेश का उपदेश भी चौं वर्णा लई सांझा है। उहदे निगाह दे अंदर कोई बेगाना कोई अपना नहीं, कोई इलाके की नफरत नहीं, कोई अपनी जथे बंदी दी नफरत नहीं, फिर ओदे लई भी सारे बराबर ने। भगत जी कहन लगे बन उठाई पोटली किथे वंजा काता। ए जड़ी बुराइयां दी पोटली आम लोग सिर दे उत्ते रख के चल रहे ने इनू छड के दरवेश बनिया जा सकदा है। ए जड़ी बुराइयां दी गंड बुराइयां दी पंड लेके असि सिर दे उत्ते चल रहे हैं। सतगुरु गुरु नानक साहब जी नू पढ़ो गुरबाणी विचों ते गुरु नानक साहब जी ने किधरे भी एक बाणी दे अखर दे अंदर ए संदेश नहीं फरमाया कि तू संगत करिया कर तेरी चमड़ी दा रंग बदल के ना चिट्टा हो जाएगा, तू संगत करिया कर बाणी पढ़िया कर नितनेम करिया कर या गुरमत दे असूलां नू मन्निया कर ते तेरे नक्शो निगार जेड़े करूप ने ओ सरूप बन जाणगे, तेरा कद बढ़ के लम्मा हो जाएगा, तू सुनखा बन जाएगा। किधरे गुरबाणी दे अंदर इस तरह का वचन आया। जदों भी आया है उदों मन दे संबंध विच वचन आया है, संगत करेगा मन बदलेगा, बाणी नू पढ़े विचारेगा मन बदलेगा, बाणी दे आसरे चलेगा मन नू रस मिलेगा। गल ही गुरबाणी दे अंदर प्यारे मन दी चलदी है ते दरवेश ओ है जो अंदरों बाणी दे नाल जुड़िया अंदरों। फिर अखीर ते मैं एक बेनती होर भी करदा चला, साढ़े कोल कोई इस तरह की ऐनक ते है नहीं पे जो अखां दे उत्ते लाईए ते जेड़ा साढ़े सामने खड़ा है वो नजरां तक लैन के सच्चा है जां झूठा है। साड़ी अपनी इतनी तौफीक नहीं, अखां दे अंदर इन्नी बरीक बीनी नहीं, पर जे अपनी समझ नहीं ते समझ देन वाले गुरु नूं पुछना ते कोई मेहना नहीं ना। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी चार अखर बाणी दे उस कसवट्टी नूं उस बंदे दे उत्ते ला के परख लिया करो कि ए सच्चा है जां झूठा है, दा जवाब तुहानूं अपने आप मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। जे गुरबाणी दे अनुसार गुरबाणी दी कसवट्टी दे नाल ला के परखोगे, क्यों परखण दी लोड़ है, क्योंकि सुनियारा सोने नूं हथ दे अंदर पकड़दिआं ही उह अंदाजा ते ला लैंदा है कि सोना असली है जां सोना नकली है। पर अपनी उहदे कोल इक हुंदी है परख, इक हुंदा है पत्थर दा निक्का जिहा वट्टा जिहनूं कसवट्टी कह दिंदे ने। उह आम पत्थरां वर्गा पत्थर नहीं, थोड़ा खास पत्थर हुंदा है, हुंदा पत्थर ही है। सोने नूं उहदे उत्ते कसाउंदे ने, उहदे रंग नूं वेख के उहनां नूं समझ पै जांदी है असली सोना है जां नकली सोना है। प्यारिओ जे खुद ना समझ पवे असल ते नकल दी पहचान करन वास्ते धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी दे उत्ते उहनूं ला के वेख लिया करो, ये बंदा सच्चा है तां समझ पै जाएगी, जवाब आ जाएगा, ते जे झूठा है तां समझ पै जाएगी। एक बेनती मैं होर करदा चला आप संगत दे सामने, जिन्हां दे कोल कोई कला है, कोई गुण है, कोई रिद्धि है, कोई सिद्धि है, कुछ भी किसे दे पास है, वो सारे सत्कार योग ने मुबारक ने। पर जिथों ये सारे गुण सानू मिल रहे ने उहदा नां है निरंकार, उहदा नां है परमात्मा। जिस दी झोली दे अंदर भी जो किसे नूं दात मिली वो मिली कित्थों, ए निरंकार दे कोलों। हुण जिन्ना पानी झीलां दे अंदर तालाबां दे अंदर छपड़ियां दे अंदर सरोवरां दे अंदर नदियां दे अंदर दरियावां दे अंदर आप वेख रहे हो, विद्वानां ने पानी दा मरकज पानी दा केंद्र सागर नूं मन्निया है और पानी सागर दा ही है, भावें उह छपड़ां दे अंदर है तालाबां सरोवरां दे अंदर है झीलां दे अंदर है या दरियावां दे अंदर है, पानी दा मरकज सागर है, सागर दा ही पानी सारिआं दे अंदर है। किसे दे कोल कोई ताकत कोई रिद्धि कोई सिद्धि कोई गुण है ते उह गुण सारे दे सारे परमात्मा कोलों ही आए ने। ते धन श्री गुरु नानक देव पातशाह तो लैके दसे गुरु साहिबाना ने सानू सीधा परमात्मा दे नाल जोड़िआ, सीधा परमात्मा दे नाल। मुबारक ने ओ छपड़ियां जिन्हां दे कोल पानी है, पर साडा छपड़ियां दे नाल संबंध नहीं, सागर दे नाल संबंध है। मुबारक ने ओ नदियां, मुबारक ने ओ दरिया जिन्हां दे कोल पानी है, ओ सत्कार योग ने, चलो उन्हां दा पानी फसलां नूं हरियां भरियां करदा है, लोकां दी प्यास बुझांदा है, मुबारक ने।
0: पर जिथों उस दरिया नू पानी मिल रहा है उदा शुक्रिया अदा करना कदी ना भुलो और उन्नू ही अपना मुरशद मनो ओदे नाल ही जुड़ो तुहाडी श्रद्धा नू कदी चकना चूर होना ही नहीं पेगा तुहाडी श्रद्धा कदी टुटेगी नहीं अधूरियां दे नाल जुड़ के श्रद्धा टुट जांदी है पूरियां दे नाल जुड़ के कदी श्रद्धा टुटदी नहीं है ते साडे वास्ते धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह नालों वड्डा कोई नहीं इन्हां नालों पूरा भी कोई नहीं। भगत फरीद साहब जी दे ए मां वाक जिन्हां नूं आधार बना के मैं कुछ बेनतियां आप संगत दे सन्मुख रखण दा निमाना यतन कर रहा सां।
1: हस्त अलंबन देहु प्रभ कर तो उदर गोपाल मोह निर्गुण मत थोरिया तू सद ही दीन दयाल जो आवत शरण ठाकुर प्रभ तुमरी तिस राखो हो किरपा तार जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो राखो हो लाज मुरार वाहे गुरु साहिब जीओ किजना बुझै किजना सूझै दुनिया गुजी पा साई मेरा चंगा कीता नाही ताहां हम भी दजां आहे

एक वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पवित्र अते निगी गोद आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी जनों, मन बिरतियां एकागर करके बैन अते सुनन दी कृपालता करियो। आप सरवण करदे आ रहे हो रोज सवेर दे वकत भगत फरीद साहब जी दी बाणी विचों लड़ीवार विचार, लड़ीवार कथा। अज जो श्लोक आप संगतां दे सन्मुख पढ़ के सुनाए गए, पहला श्लोक है फरीदा जे जाना तिल थोड़े संभल बुक भरे, कि जे मैं जानदा हुंदा कि तिल थोड़े ने ते जल्दी जल्दी बुक भर भर के दूसरे पासे रखन दे नाल सुटन दे नाल इन्होंने जल्दी खत्म हो जाना है, ते मैं बड़ा सोच विचार के संभल संभल के कदम पुटदा बुक भरदा ताकि मेरे भांडे विचों तिल मुकदे ना। हकीकत ए है फरीद जी जिधर इशारा कर रहे ने कि मनुख नूं जदों अपने सवासां दी कीमत समझ विच आउंदी है कि मेरे सवास अमोलक ने, ते जिहड़े सवास ए अज तों पहलां लै चुका है, जिन्ने सवास गुजार चुका है, उन्हां पिछलियां बीतियां होयां सवासां दे अंदर ए वेखदा है कि मैं कमाया की ते गवाया की, ते नजर ए आउंदा है कि गवाया सब कुछ है ते कमाया कुछ भी नहीं। समझ आउंदी है कि सवास गवाई गवाए ने, इन्हां सवासां दे नाल मैं कोई चंगा वणज वपार कीता हुंदा, रब जी दे गुणां दा संग्रह कीता हुंदा, वाहिगुरु मंत्र दा जाप कीता हुंदा, इह कुछ ते नजर आ नहीं रहा, ते सवास सारे गवाए होए गुम होए राख दे ढेर दे अंदर पाए होए नजर पै रहे। पिछले बीते समय दे उत्ते तौबा कर रहे ने, उपदेश ते सानू ही दे रहे ना भगत फरीद साहब, आप ते उस महासागर परमात्मा दे अंदर मिलके अपेद हो ही चुके ने, साडे लई उपदेश है पिछले बीते हुए समय दे अंदर जो गुनाह हुए जो सवास संभाल ना पाया उन्हां वास्ते पश्चाताप कर, उन्हां गुनाहां दे उत्ते तौबा कर, अगों वास्ते अपने मार्ग नूं सवारन दा आप यतन कर, अगों वास्ते रहिंदे सवासां दी संभाल करन दा यतन कर। जिस तरह धन तुहाडी जेब दे अंदर है, तुहाडा अपना ही कमाया होया धन तुहाडे पास है, हुण मर्जी भी तुहाडी है कि उस धन दे नाल बाजार विचों जा के तुसी अति कौड़ी चीज खरीद के लायो, ते तुहाडी मर्जी भावें अति मिठा पदार्थ बाजार दे अंदर जाके खरीद के लायो। एको ही मार्केट दे अंदर जान लेवा पदार्थ मिलदे ने ते जान देवा पदार्थ मिलदे ने। जो तंदुरुस्ती देण वाले ने पदार्थ ओ चीजां वस्तां मिल जांदियां ने बाजार विचों, जो रोगी बनाउन वालियां ने चीजां वस्तुआं ओ भी मिल जांदियां ने बाजार विचों। शहद खरीद के लियाउणा है, मिश्री खरीद के लियाउणी है, कोई होर मिठास खरीद के लियाउणी है, तुहाडी मर्जी, पैसा तुहाडा है, सोच तुहाडी है। अगर कौड़ा तुम्मा खरीद के लियाउणा है ते तां भी सोच तुहाडी है, पैसा भी तुहाडा, मर्जी तुहाडी है, क्योंकि सवासां दा सरमाया तुहानूं खुदावंद करीम परमात्मा ने दे दिता है। इस धन दे नाल खर्च करके तुसी वैसिया द्वारे जा सकदे हो, पब्बां क्लबां दे अंदर धन नूं खर्च करके जा सकदे हो, इसी धन दे नाल जुवारी बन सकदे हो, इसी धन दे नाल अयाशी बदमाशी दे अड्डे कायम कर सकदे हो धन दे नाल, ते इसे ही धन दे नाल आपां
गुरुद्वारे दे अंदर मंदिर मस्जिद दे अंदर धर्म स्थाना दे उते लिया के इसे धन दे नाल लंगर भी चला सकने। इस धन नू जो तुहाडी जेब दे अंदर है तुहाडी मर्जी है उन्हों सही पासे खर्चना है वह खर्चिया जाएगा, गलत पासे खर्चना है वह खर्चिया जाएगा। धन का तो कोई उजर मामला ही नहीं, धन का तो कोई अगों बोल बुलावा ही नहीं कि तू मैनू खर्च करना चाहना है गुरुद्वारे दे अंदर ते मैं गुरुद्वारे विच खर्च होना नहीं, या धन ते कदी ये नहीं कहिंदा कि तू मैनू खर्च करना चाहना है पब दे अंदर ते मैं पब दे अंदर खर्च होना नहीं, तू अपना जोर ला ते मैं अपना जोर लाउना, धन ते इस तरह नहीं कहिंदा। धन कमाया होया आया तुहाडी जेब दे अंदर, हुण अगों तुहाडी सोच दे मुताबक उस धन ने वरतों विच आउणा है, उहनूं गलत पासे वरतो उहनूं सही पासे वरतो, यह तुहाडी समझ है। मैं एक बेनती होर भी चलो करदा चला, गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी दे अंदर एक अरदास करन दा बल अरदास करन दा तरीका पातशाह ने साडी झोली दे अंदर पाया। कहन लगे सा मत दीजै दयाल प्रभ, हे मेरे मालक दया दे सागर सतगुरु जी, मैं तेरे दर दा जाचक तेरे घर दा मंगता बन के मैं तेरे कोल आया, ते हुण छीदे कोल हाथ फैला के मंगो। अगला पुछदा है ना कि तेरी मंग की, कोई मंगता तुहाडा दरवाजा नौ करे तुहाडी डोर खड़काए, तुसी पुछोगे ना तेरी मंग की, कपड़ा चाहिदा है, भोजन चाहिदा है, धन चाहिदा है, जुत्ती चाहिदी है, तेरी मंग की है, कोई मंगता जाए। हुण जद ए बोल बोले कि सामत दीजै दयाल प्रभ जे तुम्हें अरादा, सतगुरु मैं करदास लेके आया तेरे दर दे उते, ते जिहदे चरणा विच अरदास लेके गए उन्हें अगों पुछया आउण वालिया तेरी अरदास की है, तेरी मंग की है, ते आख्या सा मत, मत मैंने अकल, हे मेरे दयालु स्वामी जी मेरी झोली दे अंदर ओ अकल पाओ। केड़ी अकल? जित तुम्हें अरादा, जेड़ी अकल दे नाल मैं तेरे नाल जुड़िया रवा, तेनू अरादा रवा। इत्थे मैं एक बेनती होर करदा चला, साडे शरीर दे जिन्ने अंग ने उह सारे साडे मन दे कह चलदे ने। मन कहिंदा है अखां नूं इधर वेखना है ते अखां उधर वेखदियां ने दूजे पासे नहीं, मन कहिंदा है अखां नूं उत्ते वेखना है ते अखां उत्ते वेखदियां ने थले नहीं वेखदियां, मन कहिंदा है हत्थां नूं कि इस तरह हिलना है ते हत्थ उस तरह ही हिलना शुरू कर देंदे ने, इशारा करना शुरू कर देंदे ने जिस तरह मन दा विचार बनदा। आप पढ़े लिखे देश दे वासी हो, मेरी बेनती नूं समझण दा यतन करियो। मन कहिंदा है पैरां नूं इस मार्ग दे उत्ते चलना है, ते पैर अगों कोई उकती युक्ती अपील दलील बयान नहीं करदे, पैर उस मार्ग दे उत्ते तुरना शुरू कर देंदे ने। मन दा विचार बन जाए कि अज मैं पैरी चल के पब विच जाना है, ते पैर तुहाडे सारे शरीर नूं लै के पब तक पहुंचा देंगे। मन दा विचार बन जाए कि अज पब विच नहीं जाना, अज मैं मंदिर गुरुद्वारे विच जाना है, मस्जिद विच जाना है, ते तुहाडे दो पैर तुहाडे सारे शरीर दा वजन चुकदे चुकदे तुरदे तुरदे ओह तुहानूं गुरुद्वारे लिया के खड़ा कर देंगे। तुहाडा मन कवे कि अज मैं लंगर विच सेवा करनी है, ते तुहाडे हाथ भांडे साफ करना शुरू कर देंगे, तुहाडे हाथ लंगर वरताउणा शुरू कर देंगे, ते वरताउंदियां वरताउंदियां मन ढेरी ढा दवे, मन कह देवे कि हुण नहीं वरताउणा, ते उत्थे ही ये हाथ भी बंद हो जांदे ने, वरताउणा बंद कर देंदे ने। मेरे कहन तों गरज, साडे जिन्ने शरीर दे अंग ने उन्हां सारियां अंगां दे उत्ते हुक्म चलदा है साडे मन दा। मन पैरां नूं जिधर इशारा करदा है पैर तुरदे ने, जिस तरह हत्थां नूं इशारा करदा है हत्थ करदे ने, जिस तरह मन अखां नूं कहिंदा है अखां उस तरह वेखदियां ने, जो मन दी मर्जी हुंदी है कन्न नूं सुणदे ने, दूजा बोल कन्न नहीं सुणदे, मन दी मर्जी दे मुताबक कम करदे ने। पर जे साडे सारे शरीर दे अंग चलदे ने साडे मन दी गुलामी अंदर, मन दे हुक्म अंदर, ते ख्याल करियो मन वी साडा आजाद नहीं है, साडा मन कम करदा है साडी बुद्ध दे मुताबक। जिस मनुख दे कोल बुद्ध चंगी होवे, समझ चंगी होवे, उहदे मन दे अंदरों बनन वाले विचार चंगे बनन गए, जे जिहदे विचार चंगे बन गए
ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ, ਅਗਰ ਮਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਬਣਨਗੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਥੱਕਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਹੈ, ਮਤ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁਰਨੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਗਿਆਨ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ, ਤੇ ਜਦ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਮੈਲੇ ਨੇ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਲੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਬਣਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਡੇ ਬਿਖੇਰਦਿਆਂ, ਕੰਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਖੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਫ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਰਾਹ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਮੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਆਖਿਆ ਸਾ ਮਤ ਦੀਜੈ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ, ਹੇ ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ, ਤੇ ਰਹਿਮ ਇਹ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮਤ ਦੇ। ਚੰਗੀ ਮਤ ਬਣੇਗੀ, ਮਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗਾ ਬਣੇਗਾ, ਮਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗਾ ਬਣੇਗਾ, ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਬਣਨਗੇ, ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਸਨੇ ਆ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤੋ ਮੰਗਿਆ ਕੀ ਇਹ ਸਾਮਤ ਦੀਜੈ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਅਰਾਧਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਤ ਪਾ ਜਿਸ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਤੋ ਹੁਣ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਜਾਣਾ ਤਿਲ ਥੋੜੇ, ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਵਾਸ ਥੋੜੇ ਨੇ ਔਰ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਦੇ ਨੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੰਭਲ ਫਿਰ ਸੰਭਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਜਾਈ ਰੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਪਰ ਪਾ ਕਮਾਲ ਬਚਨ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਬਚਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਦਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਚਾ ਨਚਾ ਕੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਹਿਲਾਉਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮਦਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਉਗਰਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਨਚਾਇਆ, ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ, ਆਪ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਾਲਾ, ਤੇ ਮਾਲਾ ਸੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੋਨੇ ਦੀ। ਚਲੋ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਹੋਏਗੀ, ਵੈਸੇ ਗਰੀਬ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪ ਬਣਾ ਹੀ ਲਈ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਇੱਕ ਮਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਮਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਪਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਂਦਰ ਮੇਰੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ, ਬਾਂਦਰ ਨਾਚ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇ, ਬਾਂਦਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਚੱਲੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇ। 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਾਲਾ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਂਦਰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਸੋਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਂਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੀ ਕਦਰੋ ਕੀਮਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਆਪ ਮਦਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਉਗਰਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਫੜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਾਲਾ ਦਾ ਧਾਗਾ ਖਿੱਚਿਆ
सूत तोड़िया मणका मणका करके उन्हों मिट्टी दे अंदर बखेर दिता। भाई गुरदास साहब किधरे खड़े सन, उन्होंने वेखिया कि बंदर ने सोने की कदर नहीं पाई, कलम लई कागज लिया ते एक बोल सानू उपदेश करन वास्ते भाई गुरदास साहब जी ने लिख दिता। कहन लगे रतन मणि गल बंदर है कि हकीम ना जाने, रतना दी जड़ी माला बंदर दे गल वे से पर बंदर की जाने उहदी कीमत की। सोना भावे कीमती है पर जिन्हू समझ है उहदे वास्ते कीमती है, जिन्हू नहीं समझ उहदे वास्ते उह मिट्टी दे बराबर है। तुहानू समझ है तुहाडे लई सोना कीमती है, मनुख दे जीवन दे अंदर सोने दी समझ है, मनुख सोने दी संभाल करदा है। सोने नू यां सजावट दे रूप विच यां किधरे लोकरां दे अंदर रखदा है, खुले आम घरां दे अंदर सोना पिया टेबल दे उत्ते दीवार दे नाल लटकदा होया तस्वीरां दी तरह सोना नजर नहीं पैंदा। लोहा आम मिलदा है, कीमत बड़ी थोड़ी है, सोना खुले आम इस तरह पिया नहीं मिलदा, ना सुनियारियां दियां दुकानां दे उत्ते ते ना साडिया घरां दे अंदर। तो खैर क्योंकि सोने की कीमत सानू पता है, सोने की कीमत का ज्ञान है, पर पशु नू सोने की कीमत का नहीं पता। पशु नू पैरां दे हेठ लताड़दा है, पैरां दे हेठ कुचलदा है, उत्ते पैर रखदा है ते अगे निकल जांदा है। चलो मैं एक बेनती होर आप संगतां दे सन्मुख रखदा चला, जिन्नी दुनिया की करंसी है, चाहे वह पाउंड है, डालर है, रुपया है, यूरो है, बाकी दे तमाम नोट करंसी ने, उहदी समझ मनुखी जीवन विच ते है। हुण मनुख दे पास करंसी होवे ते उहनू संभालदा है, मनुख दे पास धन होवे उहनू संभालदा है, ते तुसीं पंड बन के डालरां दी किसे पशु दी खुरली दे अंदर पाओ ते पशु की जाने डालर की होंदे ने, पशु ते उहनां डालरां पौंडां नूं वी पैरां दे हेठ लताड़ेगा। हां उहनां ही डालरां पौंडां दे नाल कोई हरे रंग दा चारा खरीद के पशु दी खुरली विच पाओ, उहदे सामने रखो ते पशु उहनू खाना शुरू करेगा, उह वी प्यार दे नाल, पशु दा मन खुश होएगा, खाएगा प्यार दे नाल। पशु नू समझ चारे दी है, चारे दी संभाल है, मनुख नू समझ करंसी नोटां दी इहदी संभाल है, पशु नू करंसी दी संभाल नहीं। हुण मैं अपने असली मुद्दे नू तुहाडे सामने अर्ज करां, जिस मनुख नू धर्म दे मार्ग दे उत्ते चलदिआं चलदिआं अपने सवासां दी समझ पै गई, उह ते सवासां दी करेगा संभाल ते खिमा करिओ, जिन्नू ना समझ पई उह पशुआं वांग इन्हां सवासां नू अजाई रोलेगा। भावें पाउंड किन्ना कीमती, 80 रुपये दा इक पाउंड है, पर पशु दे सामने पाओ ते पशु उहनू पैरां दे हेठ रोल देगा। भावें दिनार 200 रुपये विकदा होवे पर पशु दे सामने पाओ ते उह पैरां दे हेठ रोल देगा। ਭਾਵੇਂ ਡਾਲਰ 50 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਹੀ ਕੁਚਲੇਗਾ ਨਾ। ਪਸ਼ੂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ? ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਵਾਸ ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਭਲ ਬੁੱਕ ਭਰੀ, ਉਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਬੁੱਕ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਕੂੜੇ ਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਬੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਸੰਭਲ ਕੇ ਉਹ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਬੁੱਕ ਭਰਕ ਭਰ ਕੇ ਕਦੀ ਕਾਮ ਦੀ ਬਿੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਦੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਲਾਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਦੀ ਈਰਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਦੀ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਦੀ ਚੁਗਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਭ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ ਰੁਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਰਬਾਦ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਧਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਬਿੰਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਗਾਰਬੇਜ ਬੈਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਮੀ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰੋਧੀ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਕ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਵਾਸ ਮੁੱਕ ਜਾਣ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਸਵਾਸ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤੇ ਸਵਾਸ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੇਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਵਾਸ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 4 ਸਾਲ,
पर वो बड़ा अपराध कमा रहा है, पाप कमा रहा है, गुनाह कर रहा है। जेड़ा मारी गया सवासी मुक है, उन कुछ करन जोगा रहा ही नहीं, क्योंकि करना सवासा नाल है। अज सवास तुहाडे कोल ने, तुहाडी मर्जी है, तुहाडी सोच दे मुताबिक इन्होंने वरतों विच आउणा है। इन्हां नूं चंगे पासे वरत लो, इन्हां नूं मंदे पासे वरत लो, इन्हां नूं परमात्मा दी याद विच वरत लो, ते भावे इन्हां नूं निंदा चुगली ईर्षा दे विच वरत लो। सवासा ने कोई इतराज नहीं करना कि मैनूं चंगे पासे क्यों वरतना है, मैनूं मंदे पासे क्यों वरतना है। एक बेनती उदाहरण वजो मैं होर करदा चला, तुसी खरीद के लियाए हो कार, ते कार लियांदी खरीद के तुसी $1,00,000 दी महंगे पा दी कार खरीद के लियांदी, कार नूं चलाउणा है तुसी, ते हुण कार ने ते मना नहीं ना करना कि मैं वैसे दुआरे नहीं जाना, मैं ते केवल गुरुद्वारे जाना है। कार ने ए भी नहीं कहना कि मैं गुरुद्वारे नहीं जाना ते मैं केवल पब क्लब दे अंदर जाना है। उन्हूं ड्राइव करन वाले तुसी हो, चलाउण करन वाले तुसी हो, अपने सवासा दी गड्डी नूं चलाउण वाले प्यारे हो तुसी हो। तुहाडी मर्जी है इन्हां सवासा दे नाल चंगा कर लो, इन्हां सवासा दे नाल मंदा कर लो। तुहाडी मर्जी इन्हां सवासा दे नाल अमृत खरीद लो, तुहाडी मर्जी इन्हां सवासा नूं दे के ते सवासा दे बदले जहर खरीद लो, ये मर्जी तुहाडी है। भगत फरीद साहब जी कहन लगे, जे जाना तिल थोड़े सवास थोड़े ने, जे बंदे नूं समझ आ जाए ते संभल बुक भरी, वो बड़ा संभल संभल के कदम फूक फूक के रखदा है, फिर सवासा नूं अजाई गवाउंदा नहीं है, इन्हां दी संभाल करदा है।

वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पवित्र अते निकी गोदा आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी श्रोते जनो, आप रोज सवेर दे वकत सत्कार योग भगत फरीद साहब जी दी बाणी विचों उन्हां दे सलोकां विचों कथा विचार सरवण करदे आ रहे हो। अज तुहाडे सामने तीन श्लोक भगत फरीद साहब जी दे पढ़ के सुनाए गए। पहला श्लोक, देख फरीदा जो थिया दाढ़ी हुई पूर। कह लगे कि अपने जीवन दे अंदर ध्यान दे के वेख की होया नजर आ रहा है, जो थिया जो हो चुका है, जो बन चुकी है खेड, वो ए नजर आ रहा है कि दाढ़ी हुई पूर, तेरे दाढ़ी दे वाल रंग अपना बदल के सफेद हो गए ने, काली हूं हुण तौले आए पवर गए बग बैठे आए, काले रंग जवानी दी निशानी वो चले गए, चिट्टा रंग बुढ़ापे दी निशानी वो आण के तेरे उत्ते बह गए। और नाल ही अगली पंक्ति विच कह रहे ने अगो हुण नेड़ा आया, अगे नेड़ा केड़ा पासा आ रहा है, अगे मौत ते पिछा रहा दूर पिछे जन्म, मौत नेड़े नेड़े आउंदी नजर आ रही है ते जन्म दा दिन पिछे दूर रह चुका नजर आ रहा है। साढ़े जीवन दी सारी खेड जन्म ते मरण दे विचकार चल रही है। साड़ी शुरुआत जन्म तो हुई, साड़ा अंत मौत ते जाके हुंदा उत्ते हुंदा है। जन्म दे नाल असी कुछ नहीं सी, मौत तो बाद कुछ बन सकन दी समर्था साड़े विच नहीं है। जन्म ते मौत दा ए विचकारला समा, विचकारले समय दे अंदर ही असी अमीर हां, गरीब हां, बुरे हां।

हां बुलारे हां जो कुछ हां इस विचकारले समय दे अंदर जब जन्म होया ते जन्म दे नाल केवल एक मनुखी बच्चे दा जन्म होया होर कुछ भी नहीं। कदी किसी ने गल नहीं कही कि डॉक्टर दे घर दे अंदर बच्चे दा जन्म होया है ते जन्म लेंदिया सार वह भी डॉक्टर है। जन्म लेंदिया सार बस वो एक बच्चा है डॉक्टर नहीं है। कदी ये गल सुनने विच नहीं आई कि एक विज्ञानी साइंटिस्ट दे ग्रह विखे एक बच्ची जां बच्चे दा जन्म होया ते वो बच्चा जन्म तो लैके ही साइंटिस्ट है विज्ञानी है। जन्म तो लैके बच्चा विज्ञानी नहीं केवल बच्चा है। एक टीचर मां टीचर पिता इस तरह के मां बाप दे घर दे अंदर जन्म लेके आउन वाला बच्चा जन्म तो टीचर नहीं वो बस केवल मनुखी बच्चा है। जन्म दे नाल वो कारोबारी भी नहीं जन्म दे नाल वो व्यापारी भी नहीं जन्म दे नाल वो पढ़िया लिखिया भी नहीं जन्म दे नाल वो कुछ भी नहीं। जो कुछ बने वो जन्म तो बाद जो कुछ बने वो मौत तो पहला इस विचकारले समय दे अंदर। इनू मैं इस तरह बेनती करा कि मां दे गर्भ दे अंदरों जद बच्चे दा जन्म हुंदा है ते एक अनकड़े पत्थर वर्गे बच्चे दा जन्म हुंदा है। अनकड़े पत्थर वर्गे अनकड़िया पत्थर आप दो चार पांच किलो दा एक माने क्वांटल दा पत्थर चुको अनकड़िया पत्थर ते उस अनकड़े हुए पत्थर नू बाजार दे अंदर वेचन वास्ते निकल जाओ ते बाजार दे अंदर अनकड़े पत्थर दी कौन कीमत देगा। बड़े पत्थर दुनिया दे अंदर रुलदे ने पहाड़ां दे पहाड़ पए ने सड़कां दे किनारे मील पत्थर ने कौन ओदी कीमत चुकाएगा जो पत्थर घड़िया नहीं। पर उही पत्थर जद एक सियाने कारीगर दे हत्थां विच चला जांदा है वो पत्थर तराशिया जांदा है पत्थर घड़िया जांदा है ते फिर उनू बाजार दे अंदर लै के जाओ फिर ओदी कीमत देन वाले सैकड़े मिल जाणगे। अनकड़े पत्थर दी कीमत नहीं पैंदी घड़े होए पत्थर दी कीमत पैंदी। उही अनकड़िया पत्थर एक तस्वीर बन जाए तस्वीर दे उत्ते चंगे चंगे रंग उडेल दिते जान भर दिते जान ते ओ मन मोहनी तस्वीर दे गाहक ते मार्केट दे अंदर बड़े ने। पर अनकड़िया बिगड़िया तिगड़िया पत्थर इस तरह दे पत्थर दे गाहक कौन ने। मां दे गर्भ विचों जद भी बच्चे दा जन्म हुंदा है अनकड़े पत्थर वर्गे बच्चे दा जन्म हुंदा है। उस तो बाद मां बाप दी संगत मां बाप दा घर दा बनाया होया माहौल इस तरह बच्चे दे संस्कार कर्म धर्म बनने आरंभ हो जांदे ने। उस तो बाद फिर बच्चे नू जेड़ी जेड़ी संगत मिलदी है जिस तरह दी संगत मिलदी है वो अपने मन नू तिवें दा करना शुरू कर देंदा है। एक मैं होर बेनती करा लोहे नू जद भी कोई मोड़ तोड़ के हथौड़े दियां चोटा मार के सट्टा मार के कुछ बनाउंदा है पर लोहा गर्म होवे लोहा उस तरह ही बनना शुरू हो जांदा है पर गर्म होवे ठंडा नहीं। गर्म लोहा वैसे ही अपने आप नू ढलना शुरू कर देंदा है जिस तरह उहदे मालक दी मर्जी हुंदी है बनाउण वाले दी मर्जी हुंदी है। मन भी साडा इस तरह दा है इनू जिस तरह की संगत दे अंदर आप लेके चले जाओ मन भी तिवे तिवे ढलना शुरू हो जाता है। इनू जुवारियां दी संगत दे अंदर ले जाओ उन्हां दा रंग कबूलना शुरू कर देंदा है। चोरां दी संगत दे अंदर लेके चले जाओ।

जा सेकित फेर है चित फरीदा कुकेंदियां जागेंदियां मती दिंदियां नित

चलती रहे, लगातार चलती रहे। गऊ भैंस मंगोला बेरी इक ताजन तुरी चंगेरी, ये सब कुछ मंगन तो बाद हुण घर दा साजो समान ते सारा ही मंग लिया, आटा मंग लिया है, दाल मंग ली है, घ्यो मंग लिया है, मझ मंग ली है, गऊ मंग ली है, घोड़ी मंग ली है। तो हुण अक्सर कहिंदे ने कि घर नूं संभालण वास्ते औरत भी चाहीदी है, और पंजाबी ठेठ भाषा दे अंदर कह देंदे ने कि औरत सूई दे नाल घर बना लैंदी है। घर दी संभाल दे अंदर, घर दे बनाउण दे अंदर औरत दा बहुत वड्डा हाथ है, छोटा हाथ नहीं है, बहुत वड्डा हाथ है। गृहस्थी मार्ग दा बराबर दा हिस्सा है औरत। भगत धन्ना जी ने रब कोलों औरत भी मंग ली। कहन लगे घर की गीहन, गीहन मैंने घर वाली, घर की गीहन चंगी, ते कहन लगे रब जी चाहीदी भी चंगी है। इत्थे एक ख्याल करियो, चंगी ते सुंदर इन्हां दोहां लफ्ज़ां दे अंदर जरा को फर्क है। साडी मंग हुंदी है सुंदरता दी, भगत धन्ना जी सुंदरता दी मंग नहीं कर रहे, भगत धन्ना जी चंगी दी मंग कर रहे। चंगी दा मतलब जिहदे लक्षण चंगे ने, सुभा चंगा है, मानसिक मंडल चंगा है, विचार चंगे ने, जिहनो जिगर चंगा है। कह लगे ठीक है, परमात्मा घर वाली चाहीदी है, जीवन दा साथी चाहीदा है, पर चंगे लक्षणा वाला चाहीदा है, चंगे सुभा वाला चाहीदा है। घर की गीहन चंगी जन तन्ना लेवे मंगे, ये सब दाता मैं तन्ना तेरे कोलों लैनिया चाहना, मंग के लैनिया चाहना, मंग कर रहे ने। रब कोलों मंगना गुनाह नहीं है, रब जी दे कोलों मंगना दोष नहीं है, पर एक ख्याल करो, जदों भी मंग मंगो उदों परमात्मा नू जरूर मंगो। हुण एक बेनती कह के मैं इस तों बाद सलोक दे अखरी तुहाडे सामने रखा। आप सवेरे भी गुरुद्वारे आउंदे हो, दोपहरे आओ, शामी आओ, कल आओ, परसों आओ, जिस वक्त आउंदे हो, अरदास दी नवी लिस्ट बना के असीं अपने मन विच लैके आउंदे हां। नवीआं नवीआं सूचियां, नवीआं लिस्टां मन तैयार करदा है, और वो लिस्ट लैके असीं गुरुद्वारे आउंदे हां, अज ए अरदास करनी है, अज ए अरदास करनी है, करदे वी। ते मैं वार वार कह रहा, करना दोष नहीं है, करना गुनाह नहीं है, पर उस लिस्ट दे अंदर ए वेखो कि सारा कुछ लिस्ट दे अंदर संसार ही मंग रहे हैं, जां किधरे निरंकार भी मंगे है, लिस्ट दे अंदर पदार्थ ही मंग रहे हैं या परमात्मा भी मंगे है। साडियां सारियां लिस्टां पदार्थ दियां हुंदियां ने, परमात्मा उहदे विच शामिल नहीं हुंदा। साडी सारी लिस्ट दे अंदर, मन दी बनी सूची दे अंदर संसार हुंदा है, निरंकार नहीं हुंदा। संसारी जीव हां, संसार साडी लोड़ है, मंगना दोष नहीं, पर धर्म भी ते साडी लोड़ है, निरंकार भी ते साडी लोड़ है, निरंकार नूं क्यों नहीं मंगदे। परमात्मा धन भी चाहीदा है, पर धर्म भी चाहीदा है, परिवार भी चाहीदा है, पर निरंकार भी चाहीदा है, पदार्थ भी चाहीदा है, परमात्मा भी चाहीदा है। तेरे तो बगैर भी गुजारा नहीं, पदार्थ तो बगैर भी गुजारा नहीं। शरीर चलेगा मेरा आम दुनियावी चीजां दे नाल, मन मेरा संवरेगा चलेगा तेरी रहमत ते तेरे गुणा दे नाल। तो अज दे श्लोक दे अंदर भगत जी कहिंदे ने, फरीदा राती वड्डियां, सियाले दी बहार दियां रातां बड़ियां वड्डियां ने, दिन छोटे ने। उस रात दे अंदर तुख तुख उठन पास, लम्मे प्या प्या पासे दुखने शुरू हो गए। तुख तुख दा मतलब दुखने शुरू हो गए, ते की पास पासे दुखने शुरू होए। कह लगे जिवे रात सियाले दी रात मुक्कण विच नहीं आउंदी, उन्ना मनुखां दा जीवन भी इस तरह भारा हो जांदा है, दुब्बर हो जांदा है, दुखदाई हो जांदा है, जो एक रब दी आस ला के ते बंदे नूं अपना सहारा मन के बह जांदे ने। त्रिक तिन्हां दा जीविया जिन्हां विड़ानी आस, जिन्हां ने बंदे नूं आस बनाया, भरोसा बनाया, जिहदी आस बनाउणी सी उहनूं छड्ड दित्ता। मैं हैरान हुंना कि जां ते सानूं बाणी दी समझ नहीं है, ते जां असीं जाण बुझ के बाणी नूं मन्नदे नहीं हां। जद इह लानियां गुरु अर्जन देव साहिब जी सुखमनी साहिब विच कह रहे ने कि मानुख की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक है भगवान, ते असीं दाता फिर बंदे नूं क्यों बना के रख दिंदे आ, इह बंदा दाता है। ठीक है, वह सारिया छपड़िया मुबारक ने जिन्हां दे अंदर पानी खलोता मिलता है,
ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਲਾਬ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ, ਨਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ।

नहीं है पर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो खैर ईसाई जगत के अंदर ईसाई जगत के बानी हजरत ईशा जी उन्होंने रब तो बाद नंबर दो दे उते सफाई नूं दर्जा दिता है। हजरत ईशा जी क्या करते सन कि परमात्मा तो बाद अगर कोई साडा करना कर्म धर्म फर्ज बनता है तो वो ए है कि बाहर भी सफाई होवे ते अंदर भी सफाई होवे। चलो अंदर दी सफाई दे संबंध विच हर पैगंबर ने अवतारी तेरे बरी पुरश ने जोरदार बचना विच किया है कि मन पवित्र चाहिदा है, साफ चाहिदा है। पर हजरत ईशा दी बाहर दी सफाई दे उते भी बड़ा जोर देंदे ने ते अंदर दी सफाई दे उते भी बड़ा जोर देंदे ने। जद तो मनुख ने होश संभाली है उदों तो लैके मैल अपने बाहर भी वेखदा आ रहा है ते मैल अपने अंदर भी वेखदा आ रहा है। ते फिर बाहर दी मैल दे संबंध विच इहदी कोई जानकारी है, इहनूं कुछ ज्ञान है ते बाहर दी मैल नूं धोण दे इह साधन लभदा रहा, साधना की खोजबीन करता रहा ते बाहर दी मैल नूं हटाउण दा यतन भी करता रहा। ओ मैल चाहे तन दे उते या फिर तन दे उते पए होए कपड़िया दे उते उस मैल नूं धोण दे साधन जुटाउंदा रहा, साधन लभदा रहा। मैल हटाउणा इहदा लक्ष्य है। साधन बदलदे रहे ने, हुण भी बदल रहे ने, बदलदे रहणगे। साधन दे नाल फर्क नहीं पैंदा, गल ते इह है कि अंदर मैल ना रहे, कपड़े दे उते मैल ना रहे। एक बेनती मैं भी करदा चला, बाहर दी मैल जो साडे शरीर जां शरीर ते पाए हुए कपड़िया दे उते या सज्जे खब्बे मैल दिसदी है, इह गर्दो गुबार मिट्टी घटे दे कारण है। बाहर दी मैल गर्दो गुबार मिट्टी दे कारण है ते अंदर दी मैल बुरा वेखना, बुरा बोलना, बुरा सुनना, बुरा सोचना इस दे कारण है। जो अंदर मैल बनती है ओ बुरा वेखन बोलन सोचन करके बनती है। जो बाहर मैल बनती है ओ मिट्टी कट्टा हनेरी तूफान गर्दो गुबार इहदे कारण मैल बनती है। बाहर दी मैल अंदर नहीं जाती है और अंदर दी मैल ये साडे इंद्रियां दे राही बदल बदल के बार आउंदी रहिंदी है। तन गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी दी पवित्र बाणी है, कहन लगे भरिए हथ पैर तन देहे पानी तोतै उतरसके है। ये बाहर दी मैल है। अगर हथ पैर भर जांदे ने तो पानी नूं वरतों विच लै आओ मैल उतर जाएगी, साबण नूं वरतों विच लै आओ मैल उतर जाएगी। भरिए हथ पैर तन देह पानी तोतै पानी दे नाल तो लो उतरस खेहे लगी हुई मैल उतर जाएगी, चली जाएगी। मूत पलीती कपड़ होए देसा गुण लईए उह तोए, अगर कपड़े भी किधरे चिकड़ लवरेज हो गए ने ते कहन लगे साबुन दी वरतों करन दे नाल उह भी उजले हो जाणगे, साफ हो जाणगे। पर किसी ने प्रश्न किया, साहब जी अंदर दी मैल नूं धोण वास्ते केड़ी सरफ ते केड़ा साबण ते केड़ा पानी वरतों विच लियाईए मैल अंदर चली जाए, ते अंदर दी मैल नूं बाहर कढ़ना होवे धोना होवे तो फिर प्रश्न साडा ए धुपेगी किवें। हजूर कहिंदे ने कि परिए मत पापा कै संग उह धोपै नावें कै रंग। गुरबाणी दे अंदर लफज जिहड़ा आया ना उह पाप आया, अपराध नहीं आया इस जगह दे उत्ते। इस तरह नहीं है कि अपराध लफज आया नहीं, पर इस जगह दे उत्ते कहन लगे भरिए मत पापा कै संग, क्योंकि पाप बीज है ते अपराध उस बीज तो वधन फुलन वाला दिसन वाला बूटा है। पाप जड़ है ते उस पाप दी जड़ दे सहारे दे उत्ते जिहड़ा पनपण वाला है वह अपराध नाम का बूटा है। इस तरह कह लो पाप अंदर हुंदा है ते अपराध बाहर हुंदा है, भावे दोवे गुणा दोवे दोष दोवे तरह की मैल है, पर पाप मन दे नाल संबंध रखता है ते अपराध तन दे नाल संबंध रखता है। जो तुहाडे अंदर माड़ी सोच चल रही है, बुरी सोच चल रही है, कामुक सोच

रब ना पूजन तुद फरीदा रोटी मेरी काठ की लावन मेरी भुख जिन्ना खादी चौपड़ी घने सहन गे दुख

छोटी है, इनी परख जरूर होवे, इनी समझ जरूर होवे। वड्डी लग्जरी कार दे मिलदियां छोटी कार अपने आप चली जांदी है, सीस मैल दे मिलदियां ही छोटा कार अपने आप चला जांदा है, चंगा कपड़ा मिलदियां ही खद्दर अपने आप चला जांदा है, चंगा भोजन मिलदियां ही सादा भोजन जवार बाजरा अपने आप चला जांदा है। पर समझ होवे कि इन्हां दोवां विचों चंगा किहड़ा है, इन्हां दोवां विचों म्यार नीवा किहड़ा है, हौला किहड़ा है। महान दे मिलदियां ही छोटा अपने आप वलीन हो जांदा है, चला जांदा है। अगर साडे मन दे अंदर काम क्रोध लोभ मोह निंदा चुगली दा रस है ते पूरी तरह भरिया है ते खिमा चाहवांगा फिर रब्बी रस नूं अजे नहीं पाया। जिस दिन रब्बी रस दियां बूंदां मिलणगियां इह अपने आप ही जाने शुरू हो जाणगे, छुटने शुरू हो जाणगे। इन्हां नूं कहण दी लोड़ नहीं कि तुसीं चले जाओ, छड्डन दी लोड़ नहीं, अपने आप छुट जाणगे। पर शर्त यह है कि इन्हां दी जगह दे उत्ते कोई ना कोई दूसरा आउणा चाहीदा है, और आउणा चाहीदा है महान, आउणा चाहीदा है वड्डा, तां इह रस छुटणगे। गरीब नवाज दी बाणी दा इक वचन मैं तुहाडे सामने रखदा चलां। पातशाह कहिंदे ने रस सोजना रस रूपा कामन रस परमल की वास, रस कोड़े रस शेजा मंदर रस मीठा रस मास। कहन लगे रस सोना, तू ते सोने नू अपने शरीर दे उत्ते पा के इथों भी रस ले रहे, कड़ा पाया मोटा लोकां नू विखा रहे, कांटे पाए ने मोटे लोकां नू विखा रहे, शिंगार तकरीबन तकरीबन लोकां नू विखाउण वास्ते रह गया। खिमा चाहवांगा शिंगार लोकां दी नुमाइश वास्ते रह गया। शिंगार हुंदा सी केवल पति दी खुशी वास्ते, पर अज लोकां दी नुमाइश वास्ते पति दी खुशी वास्ते नहीं। खिमा चाहवांगा बोल मेरे कुछ इस तरह दे ने, जो तू सोना अपने तन दे उत्ते गहणियां दे रूप विच हंडा के रस लै रिहा है, सोने विचों तैनू रस मिल रहा है, रूपा चांदी विचों रस मिल रहा है, कामन कामन मैंने औरत औरत विचों रस मिल रहा है, रस रूपा रस सोयना रस रूपा कामन रस परमल की वास, तुंते इथों भी रस लै रहे हैं कि थोड़ा जिहा परफ्यूम महंगा लैके अपने तन दे कपड़िया दे उत्ते ला लिया है ते इहदे अंदर ही फुली जा रहे हैं, अहंकार करी जा रहे हैं। परमल की वास किहनूं कहिंदे ने, सुगंधी नूं, चंदन की महक नूं। अगर तू महक का छुड़काव कर लिया है तू इन्ने दे अंदर ही अपने आप नूं वड्डा समझ रहे हैं, दूजे नूं छोटा समझी जा रहे हैं। रस परमल की वास, रस घोड़े कारां चंगियां तेरे कोल ने, घोड़े चंगे तेरे कोल ने, रस शेजा मंदर मंदर घर भी चंगा तेरे कोल, ते घर दे अंदर शेज भी मखमली तेरे कोल। आखिया रस घोड़े रस शेजा मंदर रस मीठा रस मास, ये सारे रस तेरे कोल ने। इते रस शरीर के कह घट नाम नवास, दस परमात्मा दे नाम दा रस तेरे अंदर नवास करे किथे, टिके किथे। जिथे टिकना सी ओ जगह तू खाली कीती नहीं, भरे हुए बर्तन दे अंदर किसे नू कहिए होर पदार्थ पा होर भर, किवें भरेगा। तुहाडी थाली भोजन दे नाल पहले ही भरी पई है, उपरों होर कहो के दे विच पाई आ पाई आ, किथे अगला पावेगा। अगर पाएगा ते बाहर डुलेगा, अंदर समाउन दी ते जगह है नहीं, अंदर टिकन दी ते जगह है नहीं। इन्ने रस तेरे अंदर ने, वस्तु अंदर वस्त समावे दूजी होवे पास, पहला अपने अंदरों थोड़ा जिहा इन्हां रसां नूं वलीन कर, इधरों नाल नाल रब्बी रस नूं लियाउण दा यतन कर। इक दिन आएगा यह सारे रस चले जाणगे, परमात्मा दा रस तेरे अंदर टिक जाएगा। दूसरी बेनती मैं एक संगत दे सामने होर करदा चला। लंगर दे अंदर तरह तरह दे स्वादिष्ट भोजन बने हुंदे ने, लड्डू जलेब मठियाईयां, मिठे दी गल मैं करनी उचेची मिठे दी। आप अपना पात्र लेके हथां दे अंदर थाल लेके अगे अगे वधदे तुरे जांदे हो। लंगर वरताउण वाला लंगर पाउण वाला तुहाडे पात्र दे अंदर तुहाडे बर्तन विच भोजन पाई जा रहा है। जिहड़ी चीज खाण वास्ते तुहाडा मन ते ललचा रहा है, पर नाल ए भी आवाज आ रही है कि ए पदार्थ खाण दे नाल तेरी शुगर वध जाएगी, तेरे तन दा रोग वध जाएगा। बेशक मन चाहुंदा है कि ए चीज मैं खा लवां, पर अपनी बीमारी वल ध्यान करके तुसीं ओ चीज लैण तों गुरेज

चला गया। जिस पति दे नाल बाबा फरीद जी जोड़ रहे ने वो पति मरदा भी नहीं है, ते जे वो पति मरदा नहीं ते मतलब ए होया कि असी कदी रंडिया भी नहीं होना, असी सदा ही सुहागना बन के रवांगे। वो पति जांदा नहीं, पति मरदा नहीं, पति विच दोष कोई नहीं, कोई औगन नहीं। ते कमाल दी गल उस पति कोलों फिर मिलना ही मिलना है। उस पति दे घर दे अंदर शांति बड़ी है, सुकून बड़ा है, सहज बड़ा है। उस पति परमात्मा दे नाल भगत फरीद साहब जी जोड़ रहे ने, कह लगे तेरा कंत अगम बड़ा डूंगा है, पहुंच तो परा है। अगम अथाह नानक सो सुहागनी, कह लगे असल रूप दे अंदर सुहागन ओ है जो पावे बेपरवाह, जो बेपरवाह पति नू पा जाए, पा जान दा मतलब चंगी लग जाए। हुण एक बेनती मैं होर करदा चलां, पति नू चंगे लगन वास्ते पति दे मुताबक सानू शिंगार करना पएगा, पति दे मुताबक। आम दुनियावी पति हुंदे ने ओह कह देंदे ने भी मैनू लाल रंग दा कपड़ा उका चंगा नहीं लगदा। हुण सही रूप विच सुहागण होवे ना कि वह पति दी पसंद दा कपड़ा पा लवे, ते जे जिद करे भी तू कहिंदा लाल रंग दा कपड़ा पा ना ते मैं पाउणा ही लाल है, ते फिर पति दे नाल इह ते विरोध होया, पति दे नाल सहयोग ना आया, पति दे नाल कोऑपरेट उहने नहीं कीता। पति कह रहा है कि अज तो बाद मेरे घर दे अंदर बैंगणा दी सब्जी ना बनाए, उदाहरण वजो। ते पत्नी कहे मैं तीन वक्त बनाउणी बैंगन, इह ते पति दी विरोधता हो गई ना। पति नूं रिजाउण वास्ते पति दे नाल अपने विचारां नूं खत्म करके पति दे विचारां दे नाल सहमत होना पएगा, किधरे ओह तुहाडे विचारां नाल सहमत होवे, किधरे तुसीं सहमत होवो। पर धर्म दी दुनिया दे अंदर गुरु तुहाडे विचारां नाल सहमत नहीं होणगे, तुहानूं ही ओहदे विचारां नाल सहमत होना पएगा। अगर गुरु पति कह रहे ने भी ऐ सुहागण मैं तेरी झोली विच इक संदेश पा रहा, तू अज तो बाद चुगली नहीं करनी, ते जे साडी आदत बन जाए सारा दिन करनी चुगली है ते की पति साडा साडे ते रीझ जाएगा। जे गुरु पति कहे भी निंदा नहीं करनी ते मेरी जुबान जदों खुले निंदा लई खिले ते की गुरु पति रीझ जाएगा। जे गुरु पति ए गल कहन के हक नहीं मारना, बुरा नहीं वेखना, बुरा नहीं करना, बुरे राह ते नहीं चलना, ते मैं कहां गुरु तू लख वार कहिंदा रह तू पति होएगा अपनी जगह ते मैं ते सारे काम करने ने। अगर गुरु पति दी विरोधता दे अंदर चल रहे हैं तो फिर गुरु पति दा प्यार कित्थे मिलेगा, फिर उस पति नू तुहाडी कोई परवाह नहीं है। गर्ज सानू है, ओ अपना फर्ज फिर भी पाली जा रहा है, सानू रिजक देई जा रहा है, सानू सवास दिते ने, सानू तंदुरुस्ती दिती है, ओ अपना फर्ज निभाई जा रहा है, असी अपने फर्ज तो किनारा काशी कर रहे हैं। प्यारे ओ धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पाक पवित्र बाणी दे नाल जुड़ के वेखो, ना तुहानूं दुनियावी कारजां दे अंदर विघन लगेगा ते ना अध्यात्मिक कारजां दे अंदर विघन लगेगा। मैं अक्सर एक बेनती करदा कि रब नूं मिलो ना मिलो गल पासे रहन दिओ। तुसीं इह ते चाहुंदे हो ना कि जिहड़े मेरे चार दिन जिंदगी दे ने ओह आराम दे नाल सुख शांति दे नाल बीजन, इह ते तुहाडी सारिआं दी तमन्ना है ना, मेरी भी तमन्ना है, तुहाडी भी तमन्ना है। अगर यह तमन्ना है तां वी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नाल जुड़ के वेखो, तुहाडी यह तमन्ना सतगुरु अवच पूरी करनगे। जद साडे धंदे दे अंदर कोई खोट नहीं, साडे मन दे अंदर कोई खोट नहीं, असी रब जी दा चिंतन भी करांगे तो मन दे अंदर शांति क्यों नहीं बनेंगे। शांति कद नहीं बनदी, असी अपना कारज भी धंदा भी नहीं शुद्ध करदे, नजरां भी शुद्ध नहीं करदे, बुरा बोलना, बुरा वेखना, बुरा करना, ध्यान के $2 गोलक विच पा के रब जी मेनू शांति दई अरदास करवा ले नहीं, किवें बने शांति। शांति मुल ते विकदी नहीं है कि $5 दे आसरे तुहानू थोड़ी मिल जाए ते जिन्ने 20 दिते ने उहनू ज्यादा मिल जाए। अगर शांति इस तरह विकदी हुंदी ते शांति अज सारी अमीरां दी मुठ्ठी दा शिंगार हुंदी, गरीब ते विचारे पासे ही रह जांदे। इह सतगुरु दी दया दा पात्र बनन तों बाद ही मिलदी है। गुरु कृपा करन धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह मन विच शांति बने। आप अपने घर दे अंदर झूमर लिया लिया के भावे $500 $5000 दे झूमर अपने घरां दे अंदर लटका लो, ट्यूबां ला लो, प्रकाश दा साधन कर लो, बल्ब ला लो, पर जे सप्लाई पिछों नहीं ना आ रही ते 5000 दा झूमर भी किसे कम दा नहीं है।
जे सप्लाई आ रही है ते ओ सुंदर लगेगा जगेगा घर दी रौनक नूं वधाएगा ते जे पिछो सप्लाई लाइट दी बिजली दी नहीं मिल रही ते झूमर भावे 5 लाख दा ला लो की फर्क पैंदा 50 रुपया दा ला लो 500 दा ला लो की फर्क पैंदा सप्लाई सानू मिलनी है गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नाल जुड़ के जो शांति दी शांति साडे मन विच आउणी है जो शांति गुरु कोलों मिलनी है ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੇਗੀ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਅਡੰਬਰ ਲੱਖ ਕਰ ਲੋ ਜੇ ਮਨ ਦੀ ਤਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਕੂਨ ਬਣੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੋ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ ਜੋ ਬੇਪਰਵਾਹ ਪਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਭਾ ਜਾਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਨਾਤੀ ਧੋਤੀ ਸੰਭਹੀ ਸੁੱਤੀ ਆਏ ਨਚਿੰਦ ਫਰੀਦਾ ਰਹੀ ਸੋ ਬੇੜੀ ਹਿੰਗਦੀ ਗਈ ਕਥੂਰੀ ਗੰਦ ਜੋਬਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਡਰਾਂ ਜੇ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਜਾਏ ਫਰੀਦਾ ਕੀਤੀ ਜੋਬਨ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨ ਸੁੱਕ ਗਏ ਕੁਮਲਾਏ ਫਰੀਦਾ ਚਿੰਤ ਖਟੋਲਾ ਵਾਣ ਦੁੱਖ